103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई 2026। 5:58 और 26 सेकंड हुए हैं, हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। मंगलमय प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 6 बजने वाले हैं। समाचार अब लीले होंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय

जीवन में हर युद्ध हथियार से नहीं जीते जाते, कुछ युद्ध धैर्य, विश्वास और सही कर्म से भी जीते जाते हैं।

भगवान और भक्त का संबंध शब्दों का नहीं, अनुभूति का मौन संवाद है। जहाँ श्रद्धा निर्मल होती है, वहाँ कृपा स्वतः ही अवतरित होती है।

दुआओं की ताकत को कभी कम मत आंकिए। ये वो खामोश ऊर्जा है जो आपके असंभव कार्यों को संभव बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है।

सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और वो है परमात्मा का दरवाज़ा। सब उम्मीद परमात्मा से रखिए, दुनिया से नहीं।

हिमांजलि में आज बस इतना ही। अब सुनिए एक और भक्ति में प्रस्तुति, मानस गान। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, हरिहरन और साथी। संगीत सतीश भाटिया का है।

जगत के समस्त जीव मनुष्य रोग से ग्रस्त हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज करुड़, सभी जीव हर्ष विषाद भय प्रीति और वियोग के दुख से दुखी हैं। ये रोग सबको व्याप्त है, किंतु इनकी प्रतीति विरलों को ही होती है। विषय वासना के रूप में ये रोग मुनियों के हृदय में भी उपजते हैं। इनके निदान के लिए एकमात्र संजीवनी जड़ी है भक्ति, किंतु इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाए तो मिट जाए, अन्यथा करोड़ों उपाय करके भी मन रोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मन के स्वस्थ होने से आत्मिक बल बढ़ता है और उसके फलस्वरूप माया मोह से विराग उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति प्रभु प्रेम में होती है।

0: एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे देश का, वक्त हुआ है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि युवा रोजगार सृजन में केंद्र की मोदी सरकार ने 12 सालों में नया इतिहास रचा है। अनुराग ठाकुर ने कल कहा कि रोजगार मेला युवा रोजगार के प्रति मोदी सरकार की बेजोड़ प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का कार्यकाल युवाओं को रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता देने वाली सरकार के रूप में याद किया जाएगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की समृद्ध बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल ने कल लोकभवन शिमला में उनसे भेंट करने आए वरिष्ठ लेखक डॉ. ओपी शर्मा से बातचीत में कहा कि प्रदेश की विभिन्न स्थानीय बोलियां यहां की पहचान, परंपराओं और लोगों की सामूहिक संस्कृति को प्रदर्शित करती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कल शिमला में कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से इस चुनौती का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जहां अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कस रही है, वहीं नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस चिट्टे के खिलाफ 5 जून को शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन करेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने शिमला में कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और आमजन को नशे के विरुद्ध एकजुट करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस व सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली।

विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल

0: वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ₹103.7 MHz पर आप हैं FM शिमला के साथ। 7:05 हुए हैं। अब सुनिए चिंतन।
3: एक बार राजा महाराजाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। अन्य राजा महाराजागण भी चित्र विचित्र आसनों पर यथास्थान चारों ओर से उन्हें घेरे बैठे थे। इसी समय मेघनाद के समान तीव्र वायु का नाद हुआ और बड़े जोरों की हवा चली। ऐसा लगता था कि अब भारी वर्षा होने वाली होगी, पर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब इस तुमुल दुर्दिन का भेदन करके उसमें से साक्षात देवऋषि नारद निकल पड़े। नारद जी के पृथ्वी पर उतरते ही वो वायु मेघ आदि का

0: आडंबर समाप्त हो गया। देवऋषि ने सिंहासनासीन श्री कृष्ण की ओर मुख करके कहा, पुरुषोत्तम, देवताओं के बीच आप ही परम आश्चर्य तथा धन्य हैं। इसे सुनकर प्रभु ने कहा, हाँ, मैं दक्षिणाओं के साथ आश्चर्य और धन्य हूँ। श्री नारद को चलते देख राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ भी समझ ना सके कि बात क्या है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, हम लोग इस दिव्य तत्व को कुछ जान ना पाए। यदि गोप्य ना हो तो इसका रहस्य हमें समझाने की कृपा करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोग धैर्य रखें, इसे स्वयं नारद जी ही सुना रहे हैं। यूं कहकर उन्होंने देवऋषि को इसे राजाओं के सामने स्पष्ट करने के लिए कहा। नारद जी कहने लगे, एक बार सूर्योदय के समय एकांत में गंगा किनारे में घूम रहा था। इतने में ही वहां एक पर्वताकार कछुआ आया। मैं उसे देखकर चकित रह गया। मैंने उसे हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, कूर्म, तुम्हारा शरीर परम आश्चर्यमय है। वस्तुतः तुम धन्य हो, क्योंकि तुम निःशंक और निश्चिंत होकर इस गंगा में सर्वत्र विचरते हो। मेरी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि बिना कुछ सोचे वो कछुआ बोल उठा, भला मुझ में आश्चर्य की क्या बात है, और प्रभो, मैं धन्य भी कैसे हो सकता हूँ। धन्य तो है ये देव नदी गंगा, जो मुझ जैसे हजारों कछुए तथा मकर, नक्र, ईशादि संकुल जीवों की आश्रय भूता शरणदायिनी है। मेरे जैसे असंख्य जीव इनमें भरे हैं। कछुए की बात सुनकर मुझे बड़ा कुतूहल हुआ और मैं गंगा देवी के सामने जाकर बोला, सरित श्रेष्ठ गंगे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम तपस्वियों के आश्रमों की रक्षा करती हो, समुद्र में मिलती हो, विशाल काय श्वापदों से सुशोभित हो और सभी आश्चर्यों से विभूषित हो। इस पर गंगा तुरंत बोल उठी, मैं क्या आश्चर्य विभूषित या धन्य हूँ? इस लोक में सर्वाश्चर्य कर परम धन्य तो समुद्र ही हैं, जिसमें मुझ जैसी सैकड़ों बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं। इस पर जब मैंने समुद्र के पास जाकर उसकी ऐसी प्रशंसा की तो वो जल तल को फाड़ता हुआ ऊपर उठा और बोला, मैं कोई धन्य नहीं हूँ, धन्य तो है ये वसुंधरा, जिसने मुझ जैसे कई समुद्रों को धारण कर रखा है, और वस्तुतः सभी आश्चर्यों की निवास भूमि भी ये भूमि ही है। समुद्र के वचनों को सुनकर मैंने पृथ्वी से कहा, देहधारियों की योनि पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम समस्त आश्चर्यों की निवास भूमि भी हो। इस पर वसुंधरा चमक उठी और बड़ी तेजी से बोल गई, मैं धन्य वन्य कुछ नहीं हूँ, धन्य तो हैं ये पर्वत जो मुझे भी धारण करने के कारण भूधर कहे जाते हैं, और सभी प्रकार के आश्चर्यों के निवास स्थल भी ये ही हैं। मैं पृथ्वी के वचनों से पर्वतों के पास उपस्थित हुआ और कहा, वास्तव में आप लोग बड़े आश्चर्यमय दीख पड़ते हैं। सभी श्रेष्ठ रत्न तथा स्वर्ण आदि धातुओं के शाश्वत आकार भी आप ही हैं, अतएव आप लोग धन्य हैं। पर पर्वतों ने भी कहा, हम लोग धन्य नहीं हैं, धन्य हैं प्रजापति ब्रह्मा, और वे सर्वाश्चर्यमय जगत के निर्माता होने के कारण आश्चर्यभूत भी हैं। अब मैं ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा, भगवान, एकमात्र आप ही धन्य हैं, आप ही आश्चर्यमय हैं, सभी देव दानव आपकी ही उपासना करते हैं, आपसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, नारद, इन धन्य आश्चर्य आदि शब्दों से तुम मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? धन्य और आश्चर्य तो ये वेद हैं, जिनसे यज्ञों का अनुष्ठान तथा विश्व का संरक्षण होता है। अब मैं वेदों के पास जाकर उनकी प्रशंसा करने लगा तो उन्होंने यज्ञों को धन्य कहा। तब मैं यज्ञों की स्तुति करने लगा। इस पर यज्ञों ने मुझे बतलाया कि हम धन्य नहीं, विष्णु धन्य हैं, वे ही हम लोगों की अंतिम गति हैं। तदनंतर मैं विष्णु की गति की खोज में यहाँ आया और आप राजाओं के मध्य श्री कृष्ण के रूप में इन्हें देखा। जब मैंने इन्हें धन्य कहा तब इन्होंने अपने को दक्षिणाओं के साथ धन्य बतलाया।
1: MHz पर आप हैं FM शिमला के साथ चिंतन। अभी आपने सुना डॉक्टर हुकुम शर्मा की आवाज में। अब आपको जानकारी देते हैं आप कौन कौन से कार्यक्रम किस वक्त सुन सकते हैं FM शिमला पर।

अब से कुछ देर बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग शिमला FM न्यूज हेडलाइन 7:57, 8:30 और 9:57 पर। आठ बजे समाचार प्रभात, 8:45 पर रात समाचार संध्या, प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और रात 9 बजे न्यूज एट 9, 12 बजे हिंदी समाचार, 1 बजे 2:15 पर और रात 11 बजे इंग्लिश न्यूज, 12:05 पर, 1:05 पर, शाम 7:05 पर और रात 11:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार 9:20 पर, 11 बजे दिन में 3, शाम 6 और 7:45 पर।

हिमाचली लोकगीत 8:32 पर और 11:30 पर लोक संगीत और 2:30 पर शिखरों के स्वर। फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 8:45 पर, 12:10 पर, दिन में 3:10 पर, 4 और रात 8:30 पर। नौ बजकर 30 पर आप सुनते हैं कुदरत के रंग, 10 झनकार और आज है रविवार तो 10:30 पर आप सुनेंगे साहित्य दर्पण। 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम और 3:30 पर आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। 1:10 पर म्यूजिक मस्ती और 2 सब रंग। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम 4:20 से लेकर शाम 7:05 तक।

0: 7:10 पर किसान और बागवान भाई बहन सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम। रात 8 बजे भूले बिसरे गीत और 9:15 पर एक फिल्म से 9:30 पर समय रहता है दिल की आवाज भी सुन कार्यक्रम का। 10 बजे लुत्फ उठाइए गजलों का और 10:30 पर सदाबहार नगमे। तो ये थी जानकारी आज FM शिमला पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 103.7 MHz पर आप हैं FM शिमला के साथ।
1: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ 7:15 हो चुके हैं और ये वक्त है गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम का। मैं हूँ आपके साथ ऋचा शर्मा। हर दिन आता है नई ऊर्जा नई आशा के साथ। इस शोर भरी दुनिया में हम बाहर की आवाज़ों को ज़्यादा सुनते हैं। सुनना हो तो अब मैं अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। बहुत से लोग यही सोचते रहते हैं, इसने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, जबकि हमें अपने

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: हर बार हर जगह बहस करना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करती हैं। अपनी शांति और ध्यान के लिए फालतू की लड़ाइयों से दूर रहना चाहिए। जब आप इनसे बेफिक्र रहते हैं, उससे हमारी एनर्जी सेव रहती है। विवादों में ना उलझकर अलग रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सोच और आत्मविश्वास की असली ताकत है।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

आज है ब्रदर्स डे। हर साल 24 मई को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन भाइयों के प्यार, उनके योगदान और आजीवन साथ के लिए आभार व्यक्त करने और उनके साथ समय बिताने के लिए समर्पित है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भाइयों के बीच के रिश्ते को मजबूत करना और उन्हें सम्मानित करना भी है। भारतीय संस्कृति में भाई बहन के रिश्ते पर तो दो त्यौहार भी हैं, रक्षाबंधन और भैया दूज।

0: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला के साथ। जो लोग किसी शारीरिक व्याधि से ग्रस्त होते हैं वो सोचते हैं कि उनका दर्द कभी कम नहीं होगा। अगर हम बिल्कुल ठीक हैं तो हमें थैंकफुल होना चाहिए और जब किसी और को बीमार देखें तो मन ही मन अपने आप से कहें कि हे भगवान सभी को सुखी रखे। मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी देखिए कितने वर्षों तक ये टिका रहता है। इसलिए अपना और अपनों का ध्यान हमेशा रखिए, ये भगवान के द्वारा बनाई गई अद्भुत संरचना है।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

हम देखते हैं कि विचार शक्ति ही सब कुछ है। हमारा शरीर, हमारा घर जिसमें हम रहते हैं, दिन का प्रकाश, वह

0: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
2: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं FM शिमला के साथ। आपको बता दें कि पहाड़ी लोकगीत आप सुनते हैं 8:32 पर, 11:30 पर और 2:30 पर। समय रहता है कुदरत के रंग कार्यक्रम का और 10:00 आप सुनेंगे झनकार। आज रविवार है और आज 10:30 पर आप सुनेंगे साहित्य दर्पण।

0: 7:10 पर आप सुनते हैं किसान और बागवान बहनों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम। 8 बजे भूले बिसरे गीत, 9:15 पर एक फिल्म से और 9:30 पर दिल की आवाज भी सुन। मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। वक्त हुआ है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कल शिमला में कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से इस चुनौती का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जहां अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कस रही है, वहीं नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस चिट्टे के खिलाफ 5 जून को शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन करेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने शिमला में कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और आमजन को नशे के विरुद्ध एकजुट करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस व सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और एक निजी कंपनी कॉस्मो फेराइटिस लिमिटेड के बीच कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये MOU ग्रीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के क्षेत्र में शोध और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने इसे हिमालय क्षेत्र में ग्रीन टेक्नोलॉजी शोध की दिशा में बड़ा कदम बताया है। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने इस टिप्पणी के समर्थन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रदेश में 3 चरणों में 26, 28 व 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इन 3 चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 8 बजने वाले हैं अब समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय

वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के

0: अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय

0: संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार

0: विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers Meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. J.

0: Kujur secured the silver medal with a timing of 10.2 seconds, while Pranav Pramod took bronze, clocking 10.29 seconds. In the men's 400-meter event, Vishal TK won the gold medal with a new national record of 44.98 seconds, becoming the first Indian athlete to break the 45-second barrier in the event. And in IPL cricket, riding an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in Lucknow last night. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Anuja. The visit of U.S. Secretary of State Marco Rubio and his meeting with Prime Minister Narendra Modi has been prominently covered by most of the newspapers. PM backs peace push with renewed push to repair ties in meeting with Rubio is a front page headline in Hindustan Times, while the Tribune writes, India flags energy crisis. State Secretary tows U.S. oil, extends Trump's invite to Modi to visit White House. Another headline in Hindustan Times says, headway in Iran-U.S. talks raises truce hopes. Quoting Defense Minister Rajnath Singh, a Sunday Pioneer headline says, India to be biggest weapon exporter in 25-30 years, adding the government wants private sector share in defense production to rise to 50%. The Hindu reports on new law Viksit Bharat Ji Ramji replacing the 20-year-old MG Narega, set to come into effect from 1st of July, with draft rules open for feedback till 3rd week of June, under the headline, Big Poor States to get higher funds under government's new rural job scheme. Hindustan Times editorial writes how Sikkim showcases a thoughtful vision of development while respecting tradition and an exemplary social harmony to its education sector, opening the doors to the future. More red, white and blues for green card applicants, states the Economic Times, as new policy for U.S. immigration may force permanent residency seekers to return home for paperwork. And finally, the Sunday Times reports that only 6 states now have fertility rate above replacement level. The paper refers to latest sample registration report of 2024. And with that, it's back to Ganucha.
0: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. H. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik DCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderweer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani 103.7 megahertz पर आप FM शिमला के साथ वक्त हुआ है FM न्यूज हेडलाइंस का. नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा. प्रदेश में 3 चरणों में 26, 28 व 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है. इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा. चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं. चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और एक निजी कंपनी कॉस्मो फेराइटस लिमिटेड के बीच कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. ये MOU ग्रीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के क्षेत्र में शोध और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने इसे हिमालयी क्षेत्र में ग्रीन टेक्नोलॉजी शोध की दिशा में बड़ा कदम बताया है. प्रदेश भाजपा ने प्रदेश सरकार द्वारा बीते रोज मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है. इस संबंध में कल भाजपा के चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक JC शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनाव आचार संहिता की भावना के विपरीत करार दिया. प्रदेश भाजपा मीडिया संयोजक करण नंदा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के जनविरोधी फैसलों के कारण हिमाचल देश का सबसे महंगा राज्य

0: ये बन गया है। करण नंदा ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली को बंद कर दिया गया है। राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों में समय पर वेतन न मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कल निगम के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चालक परिचालक यूनियन के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर 1 जून तक निगम के कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन नहीं आया तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। वर्कशॉप कर्मचारियों ने भी वेतन न मिलने पर टूल उड़ डाउन की चेतावनी दी है। प्रदेशवासियों को एक बार फिर जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 26 व 27 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर सहित राज्य के 6 जिलों के अलग अलग स्थानों पर हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। वक्त है लोक संगीत का और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज़ में ये लोकगीत।

अनिल कुमार की आवाज़ में अभी आपने लोकगीत सुना। लोक संगीत में अभी बस इतना ही। 8:45 हुए हैं, अब सुनिए फिल्म संगीत। तेरे नाम फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में।

सब्र की राह पे चलना आसान नहीं होता, जो चल पड़े वो कभी हैरान नहीं होता। वक्त भी जब भी परखेगा मुस्कुरा देना तुम, सब्र वालों का कभी कोई नुकसान नहीं होता। बॉडीगार्ड फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल की आवाज़ में, गीत लिखा नीलेश मिश्रा ने, संगीत हिमेश रेशमिया का।

खूबसूरत सी जिंदगी का बेहतरीन पन्ना हो तुम, ख्वाब ही सही मगर हमारी तमन्ना हो तुम। अग्निपथ फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज़ में।

दुनिया में सबसे कीमती दौलत वही लोग होते हैं जिनके पास बैठकर दिल हल्का करने के लिए शब्द ढूंढने नहीं पड़ते। ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन की आवाज़ में।

फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। अब आपको जानकारी देते हैं हमारे प्राइमरी चैनल आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर बाद यानी 9:30 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम, 10 बजे रिमझिम। 10:30 पर समय रहेगा साहित्य दर्पण का। 11:05 पर समूह गान शिक्षा पाठ और 11:30 पर बाल सभा। 12:10 पर फिल्म संगीत और 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम।

हमारे दैनिक कार्यक्रम 1:10 पर सैनिकों के लिए 2 बजे सुनहरी किरणें, 2:30 पर हिमगुंजन, 2:45 पर फिल्म संकेत।

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सबसे पहले 4:20 पर सुनेंगे सिरमौरी कार्यक्रम, 4:50 पर महासवी कार्यक्रम, किन्नौरी कार्यक्रम का समय रहेगा 5:20 पर, 6:06 पर बिलासपुरी कार्यक्रम और 6:35 पर लाहौली कार्यक्रम।

रात 8 बजे धारा रे गीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राजेश ठाकुर साथियों को और रीता राम दयाल सोनी को भी। 8:15 पर फिल्म संगीत, 8:30 पर सुगम संगीत। रात 9:15 पर लुत्फ उठाइए गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता में, 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन, 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:00 जानकारी आज हमारे प्राइमरी चैनल आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मेले पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:20 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। IGMC शिमला में पहली बार हुई बड़ी आंत के कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी। और पंचायत चुनावों के मद्देनज़र किन्नौर जिला की पंचायतों में मतदान समाप्ति से 48 पूर्व मतदान दिवस तथा मतगणना दिवस को ड्राई डे घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 3 थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान चला सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 28 व तीसरे चरण के लिए 30 मई को मतदान होगा। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। IGMC शिमला में पहली बार बड़ी आंत यानी कोलन कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है। निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर 5 रुपये तक खर्च आता है, जबकि IGMC में सिर्फ 30,000 रुपये में ये ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। IGMC के सर्जरी विभाग के HOD

0: डॉक्टर पुनीत महाजन और कैंसर सर्जन डॉक्टर यशपाल ने बताया कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित मरीज की रोबोटिक तकनीक से सफल सर्जरी की गई। चिकित्सकों ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी में कम दर्द, कम रक्तस्राव होता है और बड़े चीरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आईजीएमसी में अब तक 38 रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है, जिनमें कैंसर के 3 मरीज शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि आईजीएमसी में कम खर्च पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान है।
1: आपका कैंसर था, ये मरीज हमारे पास कुछ 1.5-2 महीने पहले आया था। कुछ एक हमारे बड़ी गर्व की बात है कि हमने बाहर से कोई प्रॉक्टर भी नहीं मंगाया था। ज्यादातर बड़ी सर्जरी में नहीं तो हम पहले बाहर से प्रॉक्टर लगाते थे, बट एज अ टीम हम सर्जरी की टीम में विद हेल्प ऑफ दी एनेस्थीसिया टीम डॉक्टर सुभाष की सर्जरी के लिए हमने अपने आप की तैयारी की। इसके लिए हमारे पास डॉक्टर यशपाल है जो हमारे ऑन्को सर्जन है, कैंसर सर्जन है, और हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीतीश और डॉक्टर फहीम और डॉक्टर रूबी हमारी टीम ने उसकी तैयारी की और हमने 20 तारीख को उसको सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के लिए ऑपरेशन कर लिया। इसमें जो प्रोसीजर था ये LAR बोलते हैं उसको, लो इंटीरियर रिसेक्शन। इसमें बड़ी आंत को काट के आपको शायद ज्ञात होगा कई बार पूरी बड़ी आंत और नीचे लेफ्ट के रास्ते तक कैंसर हो तो उसको पूरा निकाल के हमें जल्दी पेट के रास्ते से फाइनली उसका रास्ता बनाना पड़ता है बड़ी आंत के कैंसर को। बट इसमें हमें रोबोटिक सर्जरी का ये फायदा रहा कि ये हिस्सा हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा बड़ी आंत का काफी सारा हिस्सा निकाल पाए और उसका नॉर्मल रास्ता जो है लेफ्ट का रास्ता उसको जोड़ पाए।
0: कुल्लू जिला में पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में कुल 3,17,476 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए कुल 7,228 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 26 मई को होने वाले इस चरण के लिए जिले में कुल 511 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए 2,601 सरकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस चरण के दौरान कुल 1,14,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं तथा प्रत्याशियों से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सहयोग की अपील की है। लाहौल स्पीति में पंचायतीराज चुनावों के बीच मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चुनावी ड्यूटी के दौरान पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के आदेशों का विरोध किया है। वर्कर्स का आरोप है कि जनजातीय क्षेत्र के दूरदराज इलाकों में रात 10 से 11 बजे तक ड्यूटी करना उनके लिए मुश्किल और असुरक्षित हो सकता है। यूनियन ने जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: यूनियन का कहना है कि 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों में कई महिला वर्कर्स को देर रात तक भोजन तैयार करना पड़ेगा, जिससे उनकी सुरक्षा और घर वापसी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यूनियन ने जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि सरकारी नियमों के अनुसार उनसे विभागीय कार्यों के अलावा अन्य कार्य नहीं करवाए जाने चाहिए। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला किन्नौर व स्पीति क्षेत्र में मतदान और मतगणना के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी किन्नौर व स्पीति क्षेत्र रिकांगपिओ द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। पंचायत चुनावों के मद्देनजर संबंधित पंचायत क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व मतदान दिवस तथा मतगणना दिवस को ड्राई डे घोषित किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
3: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रथम चरण के मतदान के लिए 24 मई शाम 3 बजे से 26 मई तक, दूसरे चरण के लिए 26 मई 3 बजे से 28 मई तक तथा तीसरे चरण के लिए 28 मई शाम 3 बजे से 30 मई तक संबंधित क्षेत्रों में शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। वहीं जिला परिषद एवं पंचायत समिति मतगणना दिवस 31 मई को भी चयनित क्षेत्रों में सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 तथा आबकारी नीति 2026-27 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेष

0: विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सॉफ्टवेयर हैं, जबकि अवसंरचना और अन्य सुविधाएं राष्ट्र के हार्डवेयर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि युवा चिकित्सकों की विशेषज्ञता, नवाचार और प्रतिबद्धता देश की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और देश भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के बारे में श्री नड्डा ने कहा कि संस्थान ने एक मजबूत ब्रांड बनाया है। ये स्वास्थ्य सेवा में पेशेवर दक्षता, समझ और विश्वसनीयता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि रोगियों की देखभाल को मजबूत करने के लिए 11 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। समारोह में 26,396 उम्मीदवारों को राष्ट्रीय बोर्ड के डिप्लोमा और डॉक्टरेट की उपाधियां तथा फेलोशिप प्रदान की गई। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, आचार संहिता में कैबिनेट बुलाकर क्यों लिए फैसले, चुनाव आयोग ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। दैनिक जागरण के शब्द हैं, चुनाव आयोग का मुख्य सचिव को नोटिस, मंत्रिमंडल बैठक हुई तो क्या निर्णय लिए। पंजाब केसरी की सुर्खी है, हिमाचल में रोबोटिक तकनीक से कैंसर मरीज की पहली सफल सर्जरी, IGMC शिमला ने रचा इतिहास। दिव्य हिमाचल की खबर है, हिमाचल की बेटी ने फतह किया एवरेस्ट, करसोग की रुचिका ठाकुर ने ITBP के महिला अभियान दल संग लहराया तिरंगा। हिमाचल दस्तक लिखता है, आज 3 बजे थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार, मौसम के रंग सुबह धूप, शाम को बारिश, ओलों और बर्फबारी से 5 डिग्री तक गिरा पारा। शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, आज से साफ रहेगा मौसम, 28 को करवट बदलेगा मौसम, बारिश के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। IGMC शिमला में पहली बार हुई बड़ी आंत के कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी। और पंचायत चुनावों के मद्देनज़र किन्नौर जिला की पंचायतों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व मतदान दिवस तथा मतगणना दिवस को ड्राई डे घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत पर आधारित सुरबेला कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर एन राजम का गायन। ये भी
2: 103.7 MHz पर आप हैं FM शिमला के साथ। 9:30 हो चुके हैं और कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं कुदरत के रंग। इस कार्यक्रम में हम आपको सैर करवाते हैं किसी पर्यटक स्थल की, क्योंकि किसी भी जगह आप जाइए वहाँ की कोई ना कोई खासियत तो ज़रूर होती है, जिस कारण वहाँ जाने का मन खुद ही कर जाता है। अगर बात करें हिमाचल की, तो भगवान ने खुद ही हिमाचल को इतना सुंदर बनाया है कि इसे स्वर्ग कहा जाए तो कोई झूठी बात ना होगी।

तो आज हम आपको बताएंगे खजियार, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक स्थित गांव है। ये पर्वतों से घिरा एक रमणीय पर्वतीय मैदान है, जिसमें एक सुंदर झील स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे भारत का छोटा स्विट्जरलैंड या मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कुदरत के रंग। खजियार पठानकोट रेलवे स्टेशन से लगभग 95 और कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। खजियार नाग देवता को समर्पित लोकप्रिय खजी नागा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ इसका नाम नाग देवता से लिया गया है।

घने देवदार और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा सुरमई तश्तरी के आकार का पठार दुनिया के 160 स्थानों में से एक है जो मिनी स्विट्जरलैंड नामित किया गया है। खजियार झील भारत के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है।

आपको बता दें कि इसका निर्माण उस धूल से हुआ है जो इसके आसपास के खरपतवारों पर जमी हुई है। घास फूल की जो मोटी मात्रा, जिसे वाचा भी कहा जाता है, ने वहाँ की भूमि को नरम और स्क्वैश बना दिया है और ये इस तरह झील में तब्दील हो गई है।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही वक्त हुआ है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार

0: आज शाम 3 बजे थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान चला सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला किन्नौर एवं स्पीति क्षेत्र में मतदान और मतगणना के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कुल्लू जिला में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि जिले के कुल 3,17,476 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की भी पर्याप्त तैनाती की गई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार सभी जिलों में मतदान सामग्री, बैलेट बॉक्स, चुनाव संबंधी दस्तावेज और अन्य जरूरी उपकरणों की सप्लाई पूरी कर दी गई है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न आए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की भी पर्याप्त तैनाती की गई है। IGMC शिमला में पहली बार बड़ी आंत यानी कोलन कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है। निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर 5,00,000 रुपए तक खर्च आता है, जबकि IGMC में सिर्फ 30,000 रुपए में हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि IGMC में कम खर्च पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान है। लाहौल स्पीति में पंचायती राज चुनावों के बीच मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चुनावी ड्यूटी के दौरान पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के आदेशों का विरोध किया है। वर्कर्स का आरोप है कि जनजातीय क्षेत्र के दूरदराज इलाकों में रात 10 से 11 बजे तक ड्यूटी करना उनके लिए मुश्किल और असुरक्षित हो सकता है। यूनियन ने जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। FM न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
1: 103.7 MHz पर आप FM शिमला के साथ। आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद यानी कि 10:30 पर आज आप सुनेंगे साहित्य दर्पण।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 10 बज चुके हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम अब सुनते हैं झनकार।

0: मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं और इसके लिए वो हमसे माफी भी नहीं मांगते, लेकिन उनके बर्ताव के कारण जो हमारे में बदलाव आते हैं उसका दोषी भी हमें ही ठहराया जाता है। तो आपको इससे ये सीख मिलती है कि किसी की बातों को दिल पे ना लें, आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के

0: रखा कर्ज फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल अनु मलिक का संगीत।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: कुछ खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती हैं। हर बात शब्दों से नहीं कही जाती, कुछ बातें नज़रों से बह जाती हैं। कुछ लोग मिलकर भी दूर रहते हैं और कुछ दूर रहकर भी करीब रहते हैं। तेजाब फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल अमित कुमार की आवाज़ें हैं, जावेद अख्तर के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
3: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
2: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

0: झनकार में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ। एफएम शिमला पर अब सुनिए साहित्य दर्पण।
1: नमस्कार, साहित्य दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में आकाशवाणी स्टूडियो में आयोजित कवि गोष्ठी।
2: नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, साहित्य प्रेमियों और सभी सम्मानित अतिथिगण। इस वर्ष आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूरे कर रही है। ये सफर भारत के जनमानस की संवेदनाओं, हमारी विविध समृद्ध संस्कृति, साहित्य और संगीत के 9 दशकों की शानदार यात्रा है, जिसमें आकाशवाणी सिर्फ माध्यम न बनकर जन जन की आवाज बन चुकी है। इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। शब्द जब संवेदनाओं से सरोबार हो उठते हैं, तब किसी कवि मन में कविता गूंजने लगती है, और जब वही कविता आकाशवाणी के मंच से उद्घोषित होती है तो लोग कई दशकों तक उसे याद रखते हैं। आज के इस कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं क्लस्टर हेड आकाशवाणी एवं दूरदर्शन एवं उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री कश्मीर सिंह जी तथा साहित्य साधक और सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी का स्वागत है। आज के शानदार आयोजन में हमारे साथ उपस्थित है प्रदेश के नामी ग्रामी साहित्य जगत की हस्तियां श्री के आर भारती जी, श्री एस आर हरनोट जी, श्री आत्माराम रंजन जी, श्री सत्यनारायण स्नेही जी, श्री रोशन जसवाल जी, देवकन्या ठाकुर जी और उमा ठाकुर जी। आप सबका आकाशवाणी मंच से एक बार फिर से स्वागत है।
1: इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्लस्टर हेड आकाशवाणी एवं दूरदर्शन हिमाचल प्रदेश एवं उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री कश्मीर सिंह जी ने प्रख्यात कवियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख श्री अनिल वर्मा जी, दूरदर्शन केंद्र के समाचार एकांश के समाचार प्रमुख नंदनी मित्तल जी, आकाशवाणी के समाचार एकांश के समाचार प्रमुख श्री रितेश कपूर जी, दूरदर्शन केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख श्री सुमित कुमार जी और आकाशवाणी के सहायक निदेशक अभियांत्रिकी श्री एडी नेगी जी और कार्यक्रम अधिकारी दीपक कुमार जी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर कवि गोष्ठी के मुख्य अतिथि क्लस्टर हेड आकाशवाणी एवं दूरदर्शन हिमाचल प्रदेश एवं उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री कश्मीर सिंह जी ने सभी उपस्थित कवियों, साहित्यकारों और सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने उद्बोधन में कहा।
3: सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित कवियों, साहित्यकारों, वरिष्ठ अधिकारियों और सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर के इस अवसर पर, जब हम एक छोटा सा आयोजन अपने यहाँ पे स्टूडियो में कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये सबसे पहले जो है आकाशवाणी का नाम, जब 1936 में इसकी शुरुआत हुई तो इसको ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया। 1936 के बाद जब इसका विस्तार हुआ तो 1956 में संस्कृत का जो एक दिया गया शब्द था, एक मैसूर के प्रोफेसर थे, उन्होंने आकाशवाणी इसका शब्द दिया गया था, तो उसको इसका आधिकारिक नाम जो है वो दिया गया। तो ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी तक का जो सफर है वो संचार का एक ऐसा माध्यम रहा है जिसने विचारों को नई दिशा दी और अभिव्यक्ति के नए आयाम सृजित किए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले एक दशक ऑल इंडिया रेडियो का

वह कालखंड था जिसमें रेडियो की आवाज इस विशाल भूखंड की अनेकों रियासतों में गूंजी और लोग भारत को एक इकाई के रूप में जानने लगे और उसका स्वरूप पहचानने लगे। देश विदेश में हो रही घटनाएं ऑल इंडिया रेडियो से सुनाई देती थी, क्योंकि उस वक्त शायद प्रसार का, जनमानस तक पहुंचाने का वो यही एक ऐसा माध्यम था। इससे लोगों में विश्व में हो रहे बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त होने का रुझान दिखाई देने लगा। यह वह महत्वपूर्ण काल था जो दो विश्व युद्धों की त्रासदी देख चुका था। हालांकि उस वक्त जो है सभी के पास जो है इस माध्यम से भी जो है वो समाचार प्राप्त करने का या किसी भी प्रोग्राम को सुनने का सभी के पास ये जो है वो संसाधन तो नहीं थे, पर जिन कुछ एक लोगों के पास थे तो वो एक स्वर्णिम युग था जहां पे बहुत सारी लोग एक जगह पे इकट्ठे होके अपने आप को लाभान्वित करते थे समाचारों के माध्यम से या देश विदेश में हो रही घटनाओं से संबंधित कार्यक्रमों से। स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं की बातें, उनके भाषण कहीं ना कहीं रेडियो के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचने लगे, जिससे कि इसकी एक छवि जो है जनमानस के लिए प्रसार के रूप में जो है वो अभिव्यक्त हुई, सृजित हुई। देश के स्वतंत्र होने के समय देश के पहले प्रधानमंत्री का संबोधन इतिहास से जुड़ी ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने पूरे देश में एकता और विकास का नया दृष्टिकोण पैदा किया। जैसा कि हम आज भी देख सकते हैं, कुछ समय पहले शायद ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी और माध्यम जो है वो प्रचार प्रसार के आ गए हैं, तो क्या हमारी प्रासंगिकता आज के समय में भी है? पर उसको लेके एक आपके सामने जो है एक सजग उदाहरण है। आज आकाशवाणी के नेटवर्क पर प्रधानमंत्री जी की मन की बात का प्रसारण और जो उसकी लोकप्रियता है वो देश देश के कोने तक पहुंच रही है। हमारे इस प्रदेश में भी आकाशवाणी की जो पहुंच है वो ग्रामीण, जनजातीय क्षेत्र और शहरों के बीच में आज भी कायम है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आकाशवाणी जिस स्वरूप में शुरू हुआ था, शुरू शुरू में आपने देखा होगा, मुझे लगता है इसमें युवा पीढ़ी है जिन्होंने शायद जो वो पुराना वक्त नहीं देखा होगा, शायद किसी प्रोग्राम के माध्यम से टीवी पे या रेडियो पे कभी सुना होगा कि हमने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स से जो है वो शुरुआत की थी। उसके बाद जो हम धीरे धीरे बढ़े तो उसके बाद जो हम स्पूल रिकॉर्डिंग के ऊपर आए, तो ये जो प्रचार प्रसार के लिए जो जरूरी तकनीकी विकास की आवश्यकता थी वो उस वक्त के लोगों ने उसको पहचाना और तकनीकी विकास जो है वो इसमें होने लगा और आज भी उस दिशा में हम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वो अग्रसर हैं। जैसा कि एक समय था कि आपको एक रेडियो चैनल पे, एक रेडियो स्टेशन पे शायद एक ही रेडियो चैनल सुनाई देगा, आज तकनीक ऐसी भी आ गई हुई है जहाँ पे जो है आप एक ही स्टेशन से आप शायद चार प्रोग्राम सेम फ्रिक्वेंसी पे या थोड़ी सी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे उनको ट्यून करके सुन सकते हैं। तो इस तकनीकी आयाम में जो वृद्धि हुई उसके कारण जो है आकाशवाणी में भी जो है थोड़ा सा इसका स्वरूप बदला है। हम स्पूल के बाद जो है वो हार्ड डिस्क बेस्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम्स की तरफ गए, जहाँ पे आपका जो है डाटा स्टोरेज, डाटा को जो है वो रिट्रीव करना, जैसा कि मान लो आपने समझ लो कि कुछ 2000 गानों का या 2000 कविताओं का कोई आपके पास संग्रह है। पुराने जमाने में शायद आप जो है लाइब्रेरी में जाएंगे, एक एक करके चीज़ को ढूंढेंगे, अगर प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं हुई होगी तो शायद उसको ढूंढने में आपको बहुत जो है वो मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मगर इन तकनीकी आयामों में वृद्धि होने के कारण, विकास होने के कारण आज के समय में सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है उसकी फैचिंग, उसको जो रिट्रीवल सिस्टम है उसको जो वापसी प्राप्त करना जो है वो बहुत ही आसान हो गया है, जिससे कि प्रचार प्रसार की दक्षता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि आप सोच ही सकते हैं कि आप एक सिर्फ डेस्कटॉप रेडियो पे ही आज के समय में आकाशवाणी के किसी भी प्रोग्राम को नहीं सुन सकते, मगर आपने शायद एक एप्लीकेशन के बारे में सुना होगा, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम जो है वो न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन है। इसके ऊपर जो है आप सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी शिमला के ही प्रोग्राम या हमीरपुर के ही प्रोग्राम या हिमाचल से संबंधित रेडियो स्टेशन के ही प्रोग्राम नहीं सुन सकते, मगर देश के किसी भी अगर आपको किसी प्रोग्राम में इंटरेस्ट है जो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है तो उसको आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। और इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ उसको जो है वो हिमाचल में या अपने देश में सुन सकते हैं, जहां पर भी जो है आपको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से वहां पे उसको सुन सकते हैं। तो इसको अगर हम आधुनिक परलांस में अगर कहें तो रेडियो का जो वर्चस्व है या रेडियो की जो रीच है या रेडियो की जो पहुँच है वो यहाँ तक फैली हुई है। तो दोस्तों, इन 90 वर्षों के सफर में आकाशवाणी ने देश और विदेश की विकास यात्रा को एक नई दिशा में अपनी भागीदारी निभाते हुए हर क्षेत्र में जन जन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो प्रशासन, सरकार और नागरिकों को जोड़ने की कड़ी में अपनी भूमिका निभा रहा है। जहां सटीकता, निष्पक्षता या उसकी वैधता की बात आती है तो मुझे लगता है कि आज भी आकाशवाणी अपने 90 सालों के सफर के बाद इस तरह

0: कार्य कर रहा है कि उसका कोई शायद सानी नहीं है। 90 वर्षों के इस उपलक्ष्य के संबंध में आज कवि संगोष्ठी की आयोजन किया गया है। सभी लोग जो है आयोजन का भरपूर आनंद लेंगे और रेडियो को आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सत्य का प्रकाश हो, स्नेह का उदय हो, कवियों का साथ हो, आकाशवाणी की बात हो, शानदार शुरुआत हो। ऐसे शानदार कवि सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सत्य नारायण स्नेही जी को। इस विशेष काव्य गोष्ठी का संचालन संभालें और अपनी शैली से इस गोष्ठी को यादगार बनाएं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सत्य नारायण स्नेही आज की इस कवि सम्मेलन में आपसे मुखातिब हूँ और आकाशवाणी के इस 90 वर्षों के उत्सव को लेकर के जो ये कवि सम्मेलन हुआ है इसकी शुरुआत करते हैं। तीन युगों तक देववाणी रही, इस युग में जनवाणी बनी। जब आदमी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, आकाशवाणी सूचना ज्ञान और मनोरंजन का आधार बनी। मनुष्य के चिंतन मनन विचार का आधार, सृजन और निर्माण को साकार करती। समाज के दूरस्थ अंतिम व्यक्ति तक आकाशवाणी ने दस्तक दी। भाषा साहित्य कला और अभिवाचन का सर्वोत्कृष्ट सर्वग्राह्य तदोपरि सर्वमान्य माध्यम आकाशवाणी ने 90 वर्षों का उत्तरोत्तर विकसित परिमार्जित और परिवर्तित सफर तय किया है। मित्रों, 90 वर्ष के इस उत्सव को आज हर्षोल्लास से मनाते हुए साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान और सर्जक यहाँ एकत्रित हुए हैं जो आकाशवाणी से भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़े हैं। मैं सर्वप्रथम आग्रह कर रहा हूँ, हमारे मध्य है कवि समीक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के कार्य से सेवानिवृत्त, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जुड़े हैं, कभी बतौर अधिकारी के तौर पर तो कभी साहित्यकार के रूप में आकाशवाणी से मुखातिब होते रहे हैं और साहित्य कला और संवेदना का परिष्कार करते रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्री के आर भारती की। के आर भारती जी, आप अपने अनुभव और अपनी कविता को साझा करें।
3: धन्यवाद, सभी को नमस्कार। मैं जब ये सर्च कर रहा था कि कब एस्टेब्लिश हुई हमारी आकाशवाणी, मुझे लगा कि बिल्कुल हम उम्र है हमारी शिमला आकाशवाणी। 1955 में हमारी शिमला आकाशवाणी का जन्म हुआ, मेरा भी 1955 का जन्म है, लेकिन जो आकाशवाणी है उसको 90 साल पूरे हो गए। और बेशक हम 1955 में पैदा हुए, लेकिन जो जुड़ाव था ऑल इंडिया रेडियो से या शिमला आकाशवाणी से, वो स्कूल के समय हुआ। 1965 का जो इंडो पाक वार था, बड़ी खबरें आती थी स्कूल में, पता चलता था कुछ, फिर हम सोचते थे कि सुने, बड़ी दिलचस्पी जैसी पैदा हुई। तो गांव में रेडियो एक दो के पास था, एक फौजी थे तो उनके पास था, उनको हम फौजी चाचा करके कहते थे। 10-15 लोग इकट्ठे हो जाते थे, फिर सूचना सुनते, कितनी चौकियाँ फतेह कर ली, कितनी नहीं, ये मतलब हमारे जो रुचि थी रेडियो में तब पैदा हुई इसमें। उसके थोड़े ही दिनों के बाद, कुछ 66 के आसपास है शायद, ग्रीन रेवोल्यूशन की जब बात चली थी, तो यहाँ भी कृषि जगत लाइक कोई प्रोग्राम था, उसका नाम शायद कृषि जगत था या कोई और था, वहाँ प्रगतिशील किसानों को भी बुलाते थे। तो हमारे गांव से भी एक, उन्होंने एक सब्जियों का बाग लगाया हुआ था और कुआं लगा के रहट की, उससे बड़ा अच्छा बाग लगा के, और वो एक प्रोग्रेसिव फार्मर हो गए। उस वक्त भी ऑल इंडिया रेडियो की नज़रें वहाँ गई, उनको बुलाया और सारे गांव के लोग खुश हुए कि रेडियो से उसका प्रोग्राम आएगा, ये होगा, सारा गांव इकट्ठा हो गया। हमने एक जगह सुना था प्रोग्राम में, मेरे को ख्याल है छठी साथी में था मैं उसमें। तो फिर उसके बाद 10वीं 11वीं में हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, फिर परिणाम के लिए बस ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ, बस ऐसे ऐसे कि मेरिट में आया कि नहीं आया, बस ऐसे ऐसे हिलता था रेडियो भी, लेकिन कभी उसके वो बटन इधर से उधर, उधर से सिग्नल कोई पोर हो जाए तो एंटीना करते थे। तो ऐसे हमारी रेडियो के साथ शुरुआत हुई। जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो दूरदर्शन आ गया हुआ था, अब उन्होंने लगाया था कॉमन रूम में, लेकिन फिर भी रेडियो से ऐसा लगाव था कि हमने अपने क्वार्टर में जहां हम रहते थे रेडियो रखा हुआ था और उसके सारे प्रोग्राम सुनते रहे। फिर मेरी पहली कविता की किताब आई, कविता संग्रह पीपल्स से पॉपुलर, नाहन में था उस वक्त एडियम। तो उस बहाने दुगल जी यहाँ प्रोग्राम करते थे, सपना जी भी थे, तो उन्होंने मुझे एक बार यहाँ रेडियो स्टेशन में बुलाया। बाद में मैं डायरेक्टर लैंग्वेज कल्चर रहा, तो उस बहाने से कई बार आना जाना हुआ। लगभग 2005-10 तक भी मानो रेगुलरली आता रहा, बीच में थोड़ा गैप भी रहा, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैंने एक कविता आकाशवाणी को समर्पित की है, पर मैंने की है आकाशवाणी शिमला को। पहाड़ी जीवन की धड़कन पीढ़ियों

0: का सच्चा साथी, मनोरंजन का पर्याय, लोक संस्कृति का दर्पण, विश्वास की परंपरा, प्रमाणिकता की पहचान, सत्ता और जनता के बीच का सेतु, बदलते युग की आवाज, विविधता में एकता का स्वर, देवधरा की मानो देवबाणी, मैं हूँ शिमला आकाशवाणी। मैं हूँ शिमला आकाशवाणी। पहाड़ों की रानी शिमला में 70 बसंत देख चुकी, पहाड़ों की रानी शिमला में 70 बसंत देख चुकी, रुकी नहीं, कभी थमी नहीं, मंजिल पर रहती नजर हमेशा, पीछे मुड़कर मैंने कभी नहीं देखा। बिन सड़क तय किए मीलों सफर, बिन सड़क तय किए मीलों सफर, आंधी तूफान भूचाल बाढ़ गगनचुंबी पहाड़, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, कब कौन रोक पाया मेरी रवानी को, विस्तार पाती मेरी कहानी को। खबर देती हूँ खबर उड़ाती नहीं, खबर देती हूँ खबर उड़ाती नहीं, लक्ष्य है सच और सटीक बोलना, ना कि हवा में सनसनी घोलना, ना कि हवा में सनसनी घोलना। कवियों की कविताओं को देती आवाज, लोक गायकों की धुनों को परवाज, वाद्य यंत्रों का निखारती नाद, लोक नृत्यों के पैरों को थिरकन, लोक नाट्यों को जीवंत मंचन, मातृभाषा हिंदी संग करती लोक बोलियों की रखवाली, महस्वी किन्नौरी मंडियाली कुलबी कांगड़ी या चंबियाली। दूर दराज गाँव में किसान बागवान सुनते चाव से कृषि जगत प्रोग्राम, जान लेते हैं घर बैठे बैठे मौसम के सब मिजाज, खाद बीज मंडियों के भाव, सरहद पर बैठा जवान लेता फरमाइशी गानों का स्वाद, मातृशक्ति के सरोकारों को समर्पित महिला जगत, शिशुओं के लिए बाल गोपाल, युवाओं के लिए युव बाणी, हिमाचल के जन जन की बाणी, मैं हूँ शिमला आकाशवाणी। मैं हूँ शिमला।
1: बहुत बढ़िया भारती जी, आकाशवाणी शिमला की पूरी यात्रा आपने करवाई और आकाशवाणी शिमला के जितने भी कार्यक्रम हैं और उस कार्यक्रम की जो विश्वसनीयता है और जो सूचना और ज्ञान के इस युग में जन जन में एक जो विश्वास पैदा करती है, वो आपने सारी बातें साझा की, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस जो हमारे दूसरे कवि कथाकार हैं उनकी हम बात करते हैं। इस सदी के मूर्धन्य कथाकार हैं, देश प्रदेश यहाँ तक कि विदेशों में भी इनकी कहानियाँ पढ़ी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कथा साहित्य में हिमाचल को विशेष पहचान इन्होंने दिलाई है। ये वो शख्सियत है जो शिमला के अतिरिक्त जलंधर दिल्ली तक आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं। इनके हिडिंब उपन्यास का प्रसारण धारावाहिक के रूप में एक वर्ष से ज्यादा समय तक इसी आकाशवाणी से किया गया है। तदनंतर लिटन ब्लॉग गिल रहा है का प्रसारण हुआ। ये भी एक संयोग है कि इससे पूर्व के आर भारती जी का जन्म और आकाशवाणी शिमला का जन्म भी 1955 में हुआ है। और मैं बात कर रहा हूँ जिस शख्सियत की, वो है एसआर हरनोट। इनका जन्म और शिमला आकाशवाणी का जन्म भी एक ही वर्ष में 1955 में हुआ है। हम मुखातिब होते हैं आदरणीय एसआर हरनोट जी से।
2: आकाशवाणी 90 वर्ष पूर्ण कर रही है, जिस उपलक्ष्य में आपने हमें यहाँ आने का अवसर दिया, मैं आकाशवाणी शिमला का और जो हमारे मुख्य अतिथि है और दूसरे अतिथि हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें यह अवसर प्रदान किया। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी जो शब्द मिला था वो 90 वर्ष पूर्व मिला था और उसी को ही हम मना रहे हैं पूरे देश में। जहाँ तक शिमला आकाशवाणी की बात है, वो अपने 70 वर्ष पूरे करके 71वें वर्ष में है और हम दो ऐसे रचनाकार यहाँ हैं भारती जी और मैं कि हम भी 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। आकाशवाणी से जुड़ाव जब हम पांचवी में या उससे आगे, जब एक इंटीरियर हमारे गांव होते थे, सड़कें नहीं होती थी, तो हमारे पास एक साधन होता था रेडियो। लेकिन मैं अपने गांव की बात करूं तो हमारा गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि वहां एक आदमी के पास रेडियो होता था और उसे एक बहुत बड़ा, जैसे एक जमींदार या कोई एक साहूकार गांव में माना जाता है कि ये बहुत संपन्न आदमी है, तो उस रेडियो के साथ वो बहुत संपन्न होता था। और हमें याद भी है कि वो कई बार जो विशेष कुछ अवसर होते थे, जैसे युद्ध के दिन भी उन दिनों थे और जो समाचार होते थे, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे उस रेडियो के आसपास एक चौपाल पे। उसके बाद फिर आकाशवाणी शिमला से जब पहाड़ी गीत प्रसारित होते थे, कविताएं आती, हम बहुत गहरे उसका जुड़ाव महसूस करते थे। लेकिन यह कभी कल्पना भी नहीं सोचा था कि जब, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी नौकरी लगी और 45 वर्ष पूर्व मेरी पहली रचना शिमला आकाशवाणी से प्रसारित हुई और वह रचना थी पहाड़ी कविता। क्योंकि मुझे उस टाइम साहित्य में हमने पदार्पण नहीं किया था, लेकिन वो एक ऐसा अवसर था कि जब वो प्रसारित हुई वो कविता, तो हमें ऐसा लगा कि पता नहीं हमें क्या मिल गया है आकाशवाणी से। और फिर पहाड़ी कविताओं के माध्यम से कई कार्यक्रम आयोजित होते थे तो हमें बुलाते थे और और उसके बाद जालंधर दूरदर्शन होता था, शिमला दूरदर्शन।

नहीं था, तो इसी आकाशवाणी के माध्यम से हमें एक अवसर मिला जालंधर दूरदर्शन जाने का, और वो एयर हुई जब हमारी कविताएं और हमने अपने चेहरे उसमें देखे, तो वो क्षण एक बहुत बड़े क्षण थे। और मैं मानता हूं कि आज अगर थोड़ा बहुत पाठक हमें पढ़ते हैं, हम इस स्थिति में हैं कि लोग साहित्य में भी जानते हैं हम सबको, तो उसका श्रेय मैं शिमला आकाशवाणी को देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आकाशवाणी नहीं होती तो शायद हम आज आपके साथ बैठे हुए नहीं होते। उसके बाद जैसे स्नेही जी ने कहा, चंडीगढ़ और दिल्ली, इसके बाद कलकत्ता, मैं जहाँ जहाँ गया, अभी मैं केरल गया था तो केरल आकाशवाणी ने विशेष रूप से मुझे बुलाया था, तो वहाँ भी एक अलग अनुभव था कि हिंदी भाषी क्षेत्र है और आकाशवाणी की कितनी रीच है। भले ही चाहे आज दूरदर्शन है, आपके पास मोबाइल है, लेकिन किसी रेडियो में आप अगर FM सुनेंगे तो आकाशवाणी से सीधे आप जुड़ते हैं। मैंने एक कविता आकाशवाणी से जोड़ के एक तैयार की है, इसका शीर्षक है आकाश में गूंजते शब्द। कि मैं कोई प्रतिमा नहीं हूँ, कि मैं कोई प्रतिमा नहीं हूँ, एक स्वर हूँ देश के करोड़ों लोगों की विश्वसनीय आवाज। मुंबई के एक कमरे से निकली एक स्वर एक कंपन में कलकत्ता की नमी तक पहुंची। लॉर्ड इरविन ने भले ही दबाया था यंत्र का बटन, पर धड़कन तो मैं इसी मिट्टी की थी। नाम बदलते रहे मेरे, कि नाम बदलते रहे मेरे, मेरे मकसद नहीं बदले, पहले IBS फिर ISBS और 8 जून 1936 को मैं ऑल इंडिया रेडियो कहलाई। 3 अक्टूबर 1957 को मुझे मिली थी स्थायी पहचान और मैं आकाश की सामग्री हुई शहजादी मल्लिका सुरेश्वरी, मैं आकाशवाणी अलंकृत होकर विश्व में राज करने लगी। डॉक्टर MV गोपाल स्वामी ने जो नया शब्द घड़ा था वो ऋषियों की घोषणा सा था, आकाश गंगा से तारों की छाओं छाओं बिचरती, चांद सूरज से बतियाती, बादलों की पगडंडियों पर टहलती, धरती पर उतरकर करोड़ों दिलों पर राज करती, मैं आकाशवाणी हुई। मैंने आज़ादी की पहली आवाज़ सुनी, जितनी खुशियां देखी उतने ही दुख सहे, विभाजन का दर्द बांटा, युद्धों में सीमाओं पर जवानों की छाती सी तनी रही, बेटों के माओं को लिखे सुखसांद के खत पढ़े, लता के स्वर में स्वर मिलाया, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश ने चांद छुआ मैंने ही सबसे पहले चंद्रयान की जय बोली, संसद से खेत तक सड़कों तक प्रयोगशाला से चौपाल तक मैंने ही विज्ञान को कहानी बनाकर सुनाया, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए नारा नहीं मेरी सांस है, मैंने कितने नाटक रचाए खेले कहानियां सुनाई, कविता को कंठ दिया गीत संगीत को पंख दिए, 22 भाषाओं और सैकड़ों बोलियों को शब्द सुर और मंच दिए, इतिहास को वाणी दी, बिस्मिल्लाह की शिनाई से रविशंकर के सितार तक, लोक की ढोलक से शास्त्रीय अलाप तक मैंने ही सुरों को सरहदों से पार कराया, लकड़ी के बक्से से FM की तरंगों तक, हथेली के फोन में न्यूज ऑन एयर तक मैं पल पल विस्तार पाती रही, विविध भारती की धुनों से हवा महल से होती हुई युवा दिलों में उतरी, हर पीढ़ी से रिश्ता जोड़ा, आज 90 वर्ष की उम्र में भी मैं शिशु सी खिलखिलाती युवाओं सी जोशीली कन्याकुमारी से कश्मीर की वादियों तक महकती बिखरती मैं आज भी वही हूँ, बिना चेहरे की विश्वसनीय आवाज और बिना पते की एक बहुत प्यारी चिट्ठी। शिमला की धुंद और बर्फ में भी मैं ही थी मैं ही हूँ, जब पहाड़ चुप थे मैंने ही देवदारों से कहा बोलो, मधुर नाटियों लोकगीतों और असंख्य लोकवादियों की धुनों पर नृत्य करो, मैंने ही पहाड़ों नदियों और बुरांश के फूलों से गौरैया मोर और जूजू राणा से कहा ब्यागड़ा झूरी लामण गंगी गाओ मोहना कुंजू चंचलो रांझो फुलमों के संगीत में डूब जाओ और गिद्धों नाटियों में जीवन की लय ढूंढो। मैं कभी मंडियाली कभी महासुई कभी कांगड़ी कभी चंबियाली कभी कुल्लुई लाहौली तो कभी किन्नौरी बोलियों में बतियाती हिमालय के शिखरों से संस्कृत और हिंदी की सरिताओं में बहती समंदर तक विस्तार पाती जन जन की आवाज़ हूँ मैं आकाशवाणी हूँ। मैं हिंदू जैन बौद्ध ग्रंथों की देवीय घोषणा हूँ, मैं गीता का ज्ञान हूँ कुरान की आयत हूँ बाइबल का वचन हूँ और

0: रमजान की सदा हूँ और गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द हूँ, मैं सब धर्मों की सादी आवाज हूँ, मैं आकाशवाणी हूँ, सर्वधर्म संभाव हूँ। धन्यवाद।
1: पहाड़ जब चुप थे तो मैंने देवदार से कहा कि आप बोलो, आप गाओ और सुनाओ। निसंदेह हिमाचल की अगर हम इस भूखंड की बात करें तो आकाशवाणी ने जो जन चेतना और जन तक पहुंच बनाई है और यहाँ की लोक संस्कृति और सभ्यता और जीने की कला को जन तक पहुंचाया है, वो अवलोकनीय है, वो उल्लेखनीय है। हरनोट जी, आपने पूरा खंड काव्य आकाशवाणी को लेकर के प्रस्तुत किया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब दाद दे रहा हूँ आकाशवाणी में जो लंबे अरसे तक समाचार वाचक के रूप में पहचान बनाए रहे हैं, श्री रोशन जसवाल। कवि है, नज़मकार है और समीक्षक है। लगातार जो आकाशवाणी में समाचार वाचक के रूप में जो इन्होंने अभिव्यक्ति कौशल का विकास हुआ है या अभिवाचन को लेकर के जितने सिद्धहस्त है, शिक्षा विभाग में शिक्षक और एक प्रशासक की भूमिका का निर्वहन करने के उपरांत आज स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं और कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी कर रहे हैं। मेरा आग्रह है रोशन जसवाल जी से।
2: शुक्रिया सुनील जी, आज के इस आयोजन को देखकर वास्तव में अभिभूत हूँ और मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूरे आकाशवाणी परिवार का, और मुझे अवसर मिला कि मैं अपने मन के शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। जब मैं याद करता हूँ, समय को पीछे मुड़कर देखता हूँ, मुझे याद आता है कि मेरी पहली रिकॉर्डिंग जब मैं नवीं कक्षा में पढ़ता था, शनिवार के दिन कार्यक्रम होता था विद्यार्थियों के लिए, नलिनी कपूर जी यहाँ हुआ करती थी, बाद में वो दिल्ली चली गई, उनके माध्यम से मुझे रेडियो से जुड़ने का मौका मिला। और सच मानिए, जब रेडियो पर पहली बार अपनी आवाज़ सुनी तो जो नए बच्चे खुद महसूस कर सकते हैं कि कैसा लगता है। दसवीं की मशोबरा से, नवीं और दसवीं मशोबरा से करी, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में स्नातक के लिए आए, फिर मुझे युवाणी में मौका मिला, यूनिवर्सिटी पहुँचा। युवाणी में एक लंबे समय तक मैंने काम किया एक कंपेयरर के रूप में। इसी बीच मुझे मौका मिला अनाउंसमेंट करने का, उसमें एक लंबे समय तक कार्य करता रहा, बड़ा आनंद आया। अब मुझे याद आता है कि मेरी ड्यूटी रात में ज़्यादा लगती थी, शनिवार को क्रॉस ड्यूटी जिसको कहते हैं। एक चीज़ और है, क्योंकि धन का अभाव रहता था उस समय, आकाशवाणी ने मुझे पॉकेट मनी दी है, ये मैं कभी नहीं भूलूँगा। और उसके बाद समाचार वाचन का मुझे मौका मिला, 2010 तक मैं समाचार वाचन इस केंद्र से करता रहा हूँ। मैं इसलिए भी साधुवाद देना चाहता हूँ आकाशवाणी शिमला को कि इसने मुझे एक पहचान दी है और आज लोग मुझे एक अध्यापक से ज़्यादा एक समाचार वाचक के रूप में याद करते हैं। साधुवाद है पूरे आकाशवाणी परिवार को, हृदय के अंतःकरण से मैं आभार देता हूँ। 90 वर्ष की यात्रा है आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। कभी सूचना का सेतु बनी कभी मनोरंजन की धार, कभी सूचना का सेतु बनी कभी मनोरंजन की धार, बहुजन हिताए बहुजन सिखाए जिसका है सार। नव की असीम गहराइयों में गूंजी एक पुकार, नव की असीम गहराइयों में गूंजी एक पुकार, 90 वर्ष का सफर यह एक सुरमई सत्कार। हिंदी भाषा हो या आंचलिक बोली, तूने शान बढ़ाई है, सत्यम शिवम सुंदरम की तूने जोत जगाई है। जहाना थी बिजली वहां भी पहुंचा तेरा स्वर, जहाना थी बिजली वहां भी पहुंचा तेरा स्वर, परदेश जोड़ा देश जोड़ा बनकर मन का हम सफर। वर्षों के इस पड़ाव पर तू आज भी जवान है, 90 वर्ष हो गए लेकिन जवान है। वर्षों के इस पड़ाव पर तू आज भी जवान है, डिजिटल की दुनिया में भी तेरी अपनी शान है। आकाशवाणी तो गूंजती रहे बनकर भारत की आवाज़, आकाशवाणी तो गूंजती रहे बनकर भारत की आवाज़, तेरी स्वर लहरियों पर हमें रहे सदियों तक नाज। नव से उतरी स्वर की धारा जन जन तक संदेश, आकाशवाणी ने रचा है विश्वासों का परिवेश। 90 वर्षों की यात्रा समय नहीं एक एहसास है, हर आवाज़ में एक कहानी है, अपना एक इतिहास है। ये 90 वर्षों की यात्रा के लिए था, क्योंकि आकाशवाणी शिमला से एक लंबे समय तक जुड़ाव रहा है और मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं उन सभी लोगों को याद करूं जिनके साथ मैंने काम किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज मैं मन से याद करना चाहता हूं, जिनके नाम नहीं भी आए वो भी इस रचना में शामिल हैं। देवभूमि हिमाचल में गूंजे आकाशवाणी की शान, देवभूमि हिमाचल में गूंजे आकाशवाणी की तान, शिमला से कांगड़ा तक महकता इसका मान। बर्फीले इन ऊंचे शिखरों पर तूने रोशनी जगाई है, जहां ना पहुंचती राहें तेरी आवाज आई है।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के स्टूडियो में आयोजित कवि गोष्ठी। इसकी अगली कड़ी हम आपको सुनवाएंगे अगले सप्ताह इसी

0: दिन इसी कार्यक्रम में। इस कवि गोष्ठी में तकनीकी सहयोग रहा वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक विक्रम चौहान, वरिष्ठ तकनीशियन ठाकुर सिंह और वरिष्ठ तकनीशियन रामचंद, प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार, परिकल्पना अनिल वर्मा। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: अभी आपने सुना साहित्य दर्पण कार्यक्रम 103.7 MHz पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला। इस वक्त FM शिमला 11 बजने को है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला, डीटीएस सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 3 बजे थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान चला सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 28 व तीसरे चरण के लिए 30 मई को मतदान होगा। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियाँ पूरी कर ली है। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कुल्लू जिला में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि जिले के कुल 317,476 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए कुल 7,228 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 26 मई को होने वाले इस चरण के लिए जिले में कुल 511 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए 2,601 सरकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस चरण के दौरान कुल 1,14,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं तथा प्रत्याशियों से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सहयोग की अपील की है। लाहौल स्पीति में पंचायती राज चुनावों के बीच मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के आदेशों का विरोध किया है। वर्कर्स का आरोप है कि जनजातीय क्षेत्र के दूरदराज इलाकों में रात 10 से 11 बजे तक ड्यूटी करना उनके लिए मुश्किल और असुरक्षित हो सकता है। यूनियन ने जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: यूनियन का कहना है कि 26, 28 और 30 मई को होने वाले चुनावों में कई महिला वर्कर्स को देर रात तक भोजन तैयार करना पड़ेगा, जिससे उनकी सुरक्षा और घर वापसी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यूनियन ने जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि सरकारी नियमों के अनुसार उनसे विभागीय कार्यों के अलावा अन्य कार्य नहीं करवाए जाने चाहिए। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी

अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। आईजीएमसी शिमला में पहली बार बड़ी आंत यानी कोलन कैंसर की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है। निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर 5 लाख रुपये तक खर्च आता है, जबकि आईजीएमसी में सिर्फ 30,000 रुपये में ये ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। आईजीएमसी के सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर पुनीत महाजन और कैंसर सर्जन डॉक्टर यशपाल ने बताया कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित मरीज की रोबोटिक तकनीक से सफल सर्जरी की गई। चिकित्सकों ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी में कम दर्द, कम

0: हो चुकी है, जिनमें कैंसर के 3 मरीज शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि आईजीएमसी में कम खर्च पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान है।
1: आंख का कैंसर था, ये मरीज हमारे पास कुछ 1.5-2 महीने पहले आया था। कुछ एक हमारे बड़ी गर्व की बात है कि हमने बाहर से कोई डॉक्टर भी नहीं मंगाया था। ज्यादातर बड़ी सर्जरी में नहीं तो हम पहले बाहर से डॉक्टर लगाते थे, बट एज अ टीम हम सर्जरी की टीम में विद हेल्प ऑफ द एनेस्थीसिया टीम डॉक्टर सुभाष की सर्जरी के लिए हमने अपने आप की तैयारी की। इसके लिए हमारे पास डॉक्टर रक्षपाल है जो हमारे ऑनको सर्जन है, कैंसर सर्जन है, और हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीतीश और डॉक्टर फहीम और डॉक्टर रूबी हमारी टीम ने उसकी तैयारी की और हमने 20 तारीख को उसको सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के लिए ऑपरेशन कर लिया। इसमें जो प्रोसीजर था ये LAR बोलते हैं उसको, लो इंटीरियर रिसेक्शन। इसमें बड़ी आंख को काट के आपको शायद ज्ञात होगा कई बार पूरी बड़ी आंख और नीचे लेफ्ट के रास्ते तक कैंसर हो तो उसको पूरा पूरा निकाल के हमें जल्दी पेट के रास्ते से फाइनली उसका रास्ता बनाना पड़ता है बड़े आंख के कैंसर को। बट इसमें हमें रोबोटिक सर्जरी का ये फायदा रहा कि ये हिस्सा हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा बड़ी आंख का काफी सारा हिस्सा निकाल पाए और उसका नॉर्मल रास्ता जो है लेफ्ट का रास्ता उसको जोड़ पाए।
0: धर्मशाला में आज फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला द्वारा आयोजित इस विशेष अभियान की थीम स्टार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 रखी गई। कार्यक्रम में 100 से अधिक खिलाड़ी, प्रशिक्षु और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। साइकिल रैली के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके अलावा योग और स्कीपिंग रोप जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बबीता फोगाट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उनके साथ फिट इंडिया एम्बेसडर दीपक मिश्रा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों ने खिलाड़ियों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करते हुए फिटनेस, अनुशासन और मेहनत का संदेश दिया। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावकों और प्रशिक्षकों से संवाद करने तथा अपने खेल से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर भी मिला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। एक और खुशनुमा सुबह में लेकर गीतों का तराना हम एक बार फिर हैं आपके साथ करने के लिए आपका मनोरंजन। तो आइए आज के दिन का आगाज करते हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से के साथ, जिसे लेकर आज मैं हूं आपके साथ शेफाली वर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं आपकी कसम फिल्म का ये गीत, जिसे कि गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: 1974 में रिलीज हुई फिल्म आपकी कसम का गीत अभी आपने सुना। ये फिल्म सुपरहिट रही। फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। फिल्म के निर्माता जे ओम प्रकाश थे जिन्होंने इसी फिल्म से अपने निर्देशक के करियर को भी शुरू किया था। सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम एफएम शिमला पर।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
0: पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर। कार्यक्रम का अगला गीत लेकर आए हैं फिल्म कन्यादान से मोहम्मद रफी की आवाज़ है। गीतकार हैं हजरत जयपुरी संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: 1968 में रिलीज हुई फिल्म कन्यादान एक रोमांटिक ड्रामा बेस्ड फिल्म थी जिसके निर्माता राजेंद्र भाटिया और निर्देशक मोहन सहगल थे। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए शशि कपूर, आशा पारेख, ओम प्रकाश और दिलीप राज।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं,
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

एक से बढ़कर एक गीतों का सफर यूं ही चलता रहेगा पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला गीत लेकर आए हैं कश्मीर की कली फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज़ है, SH बिहारी गीतकार हैं, संगीतकार हैं OP नैयर।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं फिल्म शिमला। सुबह के 11:30 हुए हैं। फिल्म शिमला पर ये समय है लोक संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं हर देश की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: जी हाँ, इन हिमाचली लोकगीतों में एक अटूट प्रेम है, सादगी है और हमारी हिमाचली संस्कृति की पूरी छवि मिलती है। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का अगला लोकगीत सुनते हैं गौरी शंकर की आवाज़ में।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: कार्यक्रम का अगला लोकगीत आइए सुनते हैं सुनीता शर्मा की आवाज में।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 12 बजने को है। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 8वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार

बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता।

से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 12:10 हुए हैं एफएम शिमला पर। यह समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं बॉर्डर 2 फिल्म का ये गीत।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लेकर आए हैं फिल्म मेट्रो, इन दिनों से अरिजीत सिंह की आवाज है, आइए सुनते हैं गीत।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं फिल्म शिमला। 12:20 होने को है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब पेश है कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत अभिनंदन। आज के हम सफर रहेंगे मैं आशा ठाकुर
1: और मैं नीना वर्मा। आप सभी को हमारा
0: नमस्कार। नीना, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसी हैं?
1: आशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि हमारी बहनें भी स्वस्थ होंगी।
0: बिल्कुल, और साथ ही ये विश्वास भी है ना कि कार्यक्रम भी सुन रही होंगी।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि नीना, जो ये आशा और विश्वास है, ये जीवन के दो नाम हैं और यही मानव जीवन की नींव भी है।
1: जी बिल्कुल,
0: जो उम्मीद होती है बहनों, वो आने वाले हमारा जो कल है उसकी एक उज्ज्वल किरण है। तो जो विश्वास होता है वो उसे साकार या सच करने की हमारी आंतरिक शक्ति होती है।
1: जी बिल्कुल आशा, इन दोनों के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है।
0: जी,
1: क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और उम्मीद एक सकारात्मक भावना है जो भविष्य में या फिर आने वाले कल को बेहतर बनाने की एक इच्छा जगाती है।
0: बिल्कुल, और साथ ही हमें ये भी सिखाती है नीना कि चाहे आज जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो कल की सुबह आएगी वो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगी।
1: जी जी आशा, और विश्वास हमें अपनी योग्यताओं और खुद पर भरोसा रखने की शक्ति या फिर प्रेरणा देता है, और साथ ही उम्मीद को वास्तविकता में बदलने का माध्यम बनता है।
0: बिल्कुल, वास्तव में अगर कहा जाए बहनों, तो जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो प्रतीक है गति का, चलने का। और जीवन को अगर एक नदिया कहा जाए तो आशा और निराशा जो है वो इसके दो किनारे हो गए।
1: जी जी, और देखिए आशा, इंसान कभी हताश और कभी निराश हो जाता है, तो कभी आशा और उमंग उत्साह से भर जाता है।
0: बिल्कुल,
1: पर जब चारों ओर से निराशा हमें घेर लेती है कई बार, तो उम्मीद ही दिए की तरह एक जीवन में हमारे काम करती है और ये हमें टूटने नहीं देती है और हमेशा मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती रहती है।
0: बिल्कुल, और जो आशावादी जो इंसान होता है वो बहनों हर परिस्थिति में, हर चुनौती में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। और यही जो उसका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है वो उसे खुद पर विश्वास करना सिखाता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और आशा और विश्वास जो है वो जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं।
1: जी जी,
0: अगर जीवन में इन दोनों का हमें साथ मिल जाए, इन दोनों का साथ हो, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
1: जी, क्योंकि ये दोनों ही हमें हमेशा सही राह और नई शुरुआत की ओर ले जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बिना आशा के जिंदगी जो है बिना तार की वीणा जैसी लगती है जिसमें कोई सुर नहीं है।
0: बिल्कुल, तो बहनों इसीलिए जिंदगी के तारों को सजाइए और छेड़िए एक मीठी सी रागिनी जिससे वातावरण महक उठे।
1: जी बिल्कुल।

0: तो देखिए आशा, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, यानी कि इसका सीधा सा सरल और साधारण सा अर्थ यही है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें अच्छा और स्वस्थ मन देता है और हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने नीना। और बहनों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं ना, जैसे अभी आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ज़्यादातर जो हमारा ध्यान है वो जाता है शारीरिक स्वास्थ्य की ओर,
0: जी
1: और जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, उसके बारे में हम कम ही सोचते हैं। जबकि कुदरत का जो दिया हुआ ये बहुत ही अनमोल उपहार, हम इसे कहेंगे, वो हमारे पास है, वो है हमारा मस्तिष्क।
0: जी
1: और शरीर के बारे में हम बहुत सोचते हैं, हम व्यायाम करते हैं, सुबह की सैर करते हैं, काम के साथ साथ शरीर को जब आराम की ज़रूरत होती है तो वो भी हम करते हैं, जिससे हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो तो अच्छा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मस्तिष्क के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है।
0: जी जी बिल्कुल आशा, ठीक कहा आपने, क्योंकि शरीर के साथ साथ हमें दिमाग की कसरत भी करते रहना बहुत ज़रूरी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि बहनों देखिए दिमाग शरीर का एक कंट्रोल सेंटर है और ज़रा सी ढील का भी दिमागी सेहत पर जो है बहुत असर पड़ता है। इसीलिए शारीरिक सेहत के साथ साथ हमें जो है अपनी मानसिक सेहत पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते, पर जाने अनजाने में कुछ गलतियां हमसे ऐसी हो जाती हैं जिसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल। तो इसके लिए हम कुछ एक बातों का अगर ख्याल रखें तो अपनी जो दिमागी कसरत है या सेहत है उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे आजकल का समय है, आजकल की जो जीवन शैली है वो इतनी व्यस्त हो गई है बहनों, कि हम सुबह के समय की अगर बात करते हैं,
0: जी जी बिल्कुल
1: और जिस घर में महिलाएं कामकाजी हैं, घर के साथ साथ बाहर का भी काम करती हैं, तो वहां का तो माहौल ही सुबह बहुत हड़बड़ी वाला रहता है।
0: जी
1: नीना,
0: बिल्कुल,
1: अक्सर
0: हाँ
1: हमने ये
0: जी
1: चीज़ देखी है,
0: देखी है, हाँ
1: तो
0: जी
1: इस समय को थोड़ा सा इस तरह से हम ढालें या इस तरह से हम एक अपना नियम बनाएं कि किस तरह से हमें सुबह के काम करने हैं, और किस तरह से, ताकि अपने लिए भी थोड़ा सा समय बचे। अब जब हम सुबह नाश्ता करते हैं तो वो भी दौड़ भाग में अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिससे जो हमारा मस्तिष्क है उसको भी पोषक तत्व जो मिलने चाहिए शायद वो उस तरह से या उतने नहीं मिल पाते हैं।
0: जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए बहनों हमें अपने सुबह का जो नाश्ता है उसके लिए ज़रूर वक्त निकालना है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसका सीधा सा असर हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: और जो सुबह के नाश्ते से हमें क्या होता है कि पूरे दिन हम जो है ऊर्जावान बने रहते हैं। तो इसलिए बहनों जो सुबह का नाश्ता है उसके लिए ज़रूर समय निकाल कर वो हमें अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आशा ने
1: दौड़
0: कहा कि
1: भाग में
0: दौड़ भाग
1: जी
0: से, उसके लिए समय निकाल के आराम से अच्छे से उसको करना है, क्योंकि उसका जो असर है वो शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग पर भी पड़ता है, और हमारे दिमाग के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है।
1: और कभी-कभी नीना ऐसा भी होता है कि जो नींद है हमारी
0: जी जी
1: वो पूरी नहीं हो पाती है, और हम इसे जो है हल्के में लेते हैं कि शायद हमारी नींद पूरी हो गई है, इसीलिए हम जो है अब सो नहीं पा रहे हैं, या अब हमें जागना चाहिए, अब काम करना चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है बहनों, कि दिमाग पर इसका भी कुछ ना कुछ तो नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि जो नींद की गड़बड़ी होती है उससे भी कई बार कई तरह की और समस्याएं जो है पैदा हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ाना हम कम से कम 6 से 7 घंटों की नींद तो ज़रूर पूरी
0: जी
1: करें या लें।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि आशा जो नींद है ना हमारी, वो भी हमारे एक दवा का काम करती है हमारे
1: बिल्कुल
0: शरीर के लिए। तो इसलिए नींद जो है हमें लेना बहुत ज़रूरी है। और बहनों आज के समय में हम लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं, जैसे कि घर का काम, बच्चों की पढ़ाई और भी बहुत सारे काम, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो ये सारे काम हैं। और इसके साथ जो है, इसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे जीवन में जुड़ गई है आशा, वो है मोबाइल फ़ोन।
1: जी बिल्कुल। मैं आपके चेहरे के हाव भाव देखकर ही समझ गई थी नीना कि आप किसके बारे में अब बात करने
0: जी
1: जा रही है।
0: जी
1: बहुत ज़रूरत भी है आज के समय की
0: जी
1: फ़ोन,
0: जी
1: ऐसा नहीं
0: बिल्कुल
1: है कि ये बहुत ही काम का नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है बहनों। पर हम लोग जो है फ़ोन पर बहुत ज़्यादा अक्सर जो है व्यस्त रहते हैं, और तब भी व्यस्त रहते हैं जब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है,
0: जी जी
1: तो इसका सीधा सा जो असर है वो हमारे दिमाग पर भी पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है।
0: जी
1: इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर अपने लिए वक्त निकाल के थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं।

0: सकती हैं, क्योंकि जो ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, वो भी हमारे दिमाग को और हमारे मन को शांत रखता है।
1: जी बिल्कुल आशा, क्योंकि ये जो मेडिटेशन और एक्सरसाइज है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो है आशा सुबह की सैर और योग से भी हमारा जो दिमाग है, हमारा मानसिक संतुलन है वो दुरुस्त और तरोताज़ा बना रहता है।
0: बिल्कुल
1: इसीलिए थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी ज़रूर निकालें और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि आशा तनाव जो है, चिंता किसी के जीवन, सब हर किसी
0: सबके
1: के
0: जीवन
1: जीवन में
0: में है,
1: है जी,
0: बिल्कुल
1: और समस्याएं सबके जीवन में होती है, लेकिन तनाव जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये मस्तिष्क के काम में भी बाधा डालना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में उदासी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या फिर नींद भी हमें प्रॉपर नहीं आती है, ऐसी समस्याएं होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। तो बहनों, इसीलिए तनाव से दूरी बनाए रखने की कोशिश करें और जो भी समस्या हो उसको समस्या का हल निकालें,
0: बिल्कुल, यानी
1: ताकि
0: कि समस्या का हल निकालने की कोशिश करें, ना कि समस्या को ही तनाव का कारण बना दें।
1: जी
0: ऐसा
1: बिल्कुल
0: हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी हम भी तो एक कोशिश कर सकते हैं, छोटी सी, अपनी
1: जी
0: सखियों के लिए, क्योंकि गीत संगीत के द्वारा,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि जो क्या होता है नीना, कि जो संगीत होता है ना, वो केवल सुनने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये
1: बिल्कुल
0: मन को शांत करने का भी एक माध्यम है।
1: जी बिल्कुल
0: जब स्वर, लय और ताल के साथ साथ हम संगीत सुनते हैं, तो मन भी एकाग्र होता है, और तब वो एक संगीत का रूप लेता है, साथ ही एक ध्यान का भी रूप ले लेता है।
1: जी बिल्कुल। तो चलिए आशा सुनते हैं गीत
0: इस सुहाने सफर पर चलें
1: जी
0: सखियों के
1: बिल्कुल
0: साथ।
1: जी जी बिल्कुल।

0: देखिए सखियो, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ जो तकनीक है वो केवल हमारी एक सुविधा का ही साधन नहीं रह गई है, बल्कि जीवन और करियर दोनों की मजबूत नींव बन चुकी है।
1: जी, आशा चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार, विज्ञान, यानी कि हर क्षेत्र में तकनीक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है।
0: जी
1: तो ऐसे में बहनों, तकनीक की कौशल या टेक्निकल स्किल्स होना भी बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यही कौशल जो है डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने और नए नए अवसर पाने में भी हमारी मदद करता है।
0: बिल्कुल। और अगर आज के हम दौर की बात करते हैं तो आज का दौर तेजी से विकसित होती तकनीकों का दौर है, नवाचारों का दौर है, जहां हर दिन नई नई जो प्रौद्योगिकियां हैं वो हमारे जीवन का, हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग जो है वो बनती जा रही हैं, और इसके जरिए समाज में सकारात्मक जो बदलाव है वो भी संभव हो पा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। हालांकि तकनीकी प्रगति के साथ साथ जो है नई चुनौतियां भी आशा उभर कर आ रही हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया है। और आज जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग हमारी रसोई घर से लेकर बाहरी दुनिया में भी होने लगा है।
0: बिल्कुल। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं बहनों कि तकनीक के इस्तेमाल से हम बच तो नहीं सकते हैं, पर हाँ, इसके जो संभावित खतरे हैं या जोखिम हैं उन पर भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी तकनीक का जो सही उपयोग है वो तभी संभव हो पाता है जब हम उसे पहले अच्छी तरह से समझें।
1: जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा आशा। और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पर्यावरण का जो है वो आपस में गहरा संबंध है, और आजकल तो ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही उपयोग होता है।
0: बिल्कुल। और जब ये उपकरण कभी खराब हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है कि वो कब तक काम कर सकता है,
1: जी,
0: जैसे हमारे शरीर की एक सीमा होती है कि हम इतने घंटे काम कर सकते हैं, उसके बाद आराम की ज़रूरत होती है, उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं बहनों, ये जब खराब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हें यूं ही कहीं भी कोने में रख देते हैं घर पर, या फिर फेंक देते हैं कहीं पर भी, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारी सेहत पर भी।
1: जी, तो इसीलिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण है वो जब खराब हो जाते हैं या उनका इस्तेमाल नहीं होता है, अनुपयोगी हो जाते हैं, तो उनका जो है उचित निपटान करना आशा बेहद ज़रूरी है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे जो हैं हमारे पुराने या फिर टूटे हुए मोबाइल फ़ोन हैं, टीवी हैं, या फिर पुराने कंप्यूटर, बैटरी, ये सभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की श्रेणी में आते हैं, और जब ये खराब हो जाते हैं या इसका जो उद्देश्य होता है वो उस उद्देश्य की पूर्ति ये नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हमें जो है हमने इनको खरीदा है, तो उससे जब ये निकल जाते हैं या इनकी जो भी इनकी वैलिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे में इसके जो निपटाने की जो निपटान की
0: ज़रूरत होती है,
1: आवश्यकता बहुत होती
0: बिल्कुल
1: है, यानी कि इसका जो सही निपटान होना
0: बहुत
1: बहुत
0: ज़रूरी होता
1: ज़रूरी
0: है।
1: है। इसे ही जो है ई कचरा भी हम लोग मानते हैं, यही ई
0: बिल्कुल
1: कचरे के नाम से जाना जाता है।
0: जी। अगर साधारण शब्दों में कहें नीना, तो ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक

0: जो कचरा होता है एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन सभी उपकरणों के लिए किया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक जो घटक हैं वो मौजूद होते हैं
1: जी,
0: और जीवन जिनका जो है जीवन चक्र समाप्त हो चुका होता है। और जो ये ई कचरा है इसकी मुख्य समस्या ये है बहनों कि इसमें जो है बहुत सारे प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं जो इंसान के साथ साथ पौधों और जानवरों सभी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जो कई सारी या ढेर सारी जो समस्याएं हैं वो भी पैदा कर सकते हैं।
1: और ई कचरे का जो प्रभाव है केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण पर भी पड़ता है, जिससे जो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। तो अनुचित तरीके से कचरे को नष्ट करना, पिघलाना या जलाना, इन सभी चीज़ों से निकलने वाले जो रसायन किसी भी दिशा में हजारों मील तक फैल जाते हैं और ये बढ़ते हुए जो वायु प्रदूषण का कारण बन जाते हैं।
0: बिल्कुल, साथ ही जब ये रसायन जो है या जो ये विषैली धातुएं हैं ये मिट्टी में मिलती हैं तो मिट्टी में जाकर भी ये उसकी जो गुणवत्ता है उसको नष्ट कर देती हैं जिससे भूमि जो बंजर हो सकती है।
1: जी,
0: साथ ही इसके अलावा ई कचरा बहनों जो अन्य जब जल स्रोतों में या जल निकायों में मिलता है या वहाँ पहुँचता है तो उनमें पहुँच कर वो जल को भी प्रदूषित कर देता है जो मानव स्वास्थ्य और जलीय जीवों के लिए बेहद घातक होता है। और इसके परिणाम स्वरूप बहनों क्या होता है कि जब ये रसायन विषैली धातुएं मिट्टी में मिलती हैं मिट्टी की गुणवत्ता को भी खराब कर देती हैं तो ये जो प्रदूषण होता है वो एक श्रृंखला को जन्म दे देता है जो अंततः मनुष्य सहित जो भी हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें मौजूद हर चीज को प्रभावित करता है।
1: जी, बिल्कुल। तो इसीलिए बहनों, ई कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए हमें ही प्रतिबद्ध होना है क्योंकि ये आज की एक जरूरत बन गया है।
0: बिल्कुल, तो ये तो बात हुई नीना सखियों के साथ ई कचरे के सही निपटान के बारे में।
1: जी,
0: और अब एक सुरीले सफर पर चले,
1: बिल्कुल
0: गीत सुन लिया
1: आशा
0: जाए।
1: जी।

0: देखिए नीना, जो एक अस्त व्यस्त या फिर फैला हुआ सा घर होता है ना, वो देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है।
1: जी
0: यानी किसी को क्या, हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हम ऐसा अपने घर पर देखेंगे, या किसी के घर पर हम जाते हैं वहाँ ऐसा माहौल देखते हैं तो कितना बुरा सा लगता है।
1: जी जी
0: और
1: बिल्कुल
0: वहीं अगर हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हो तो मन खुश भी हो जाता है।
1: जी जी
0: तो ऐसे में अगली बार क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमने अपनी जगह अगर रखी हैं तो उसे कहीं और तलाशने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो ठीक अपने जगह पर ही हमें मिल जाती है। और इस बात से कभी कभी क्या होता है ना कि व्यर्थ की कई बार बहस भी हो जाती है, तो उस चीज़ से भी हम बच जाते हैं, साथ ही समय की भी हमारी बचत हो जाती है।
1: जी और साथ ही जिन वस्तुओं का उपयोग नहीं होता है वह ज़रूरतमंदों को देने से भी जो है हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा दिखता है, घर में साफ़ सफाई बनी रहती है। जैसे रद्दी पेपर हैं आशा, उनको अगर हम थोड़े थोड़े समय के बाद बेच देते हैं
0: जी
1: तो उससे भी हमारा घर साफ़ सुथरा लगता है। और साथ ही जो है व्यर्थ रखी जो चीज़ें होती हैं अगर उसको भी हम किसी को दान कर देते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं जो उनके
0: काम
1: काम
0: आती
1: में
0: है,
1: आती है,
0: बिल्कुल
1: तो ऐसा करने से भी घर में जगह जो है वो खाली हो जाती है और जो हमारा घर है वो साफ़ सुथरा और सकारात्मक विचार उसमें हमें जो जैसे बोलते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स उसमें आती हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उसको घर में ना रख के उसको जिसके भी वो यूज़
0: काम
1: की
0: किए हैं।
1: हैं
0: जी
1: उनको दे दें, तो हम खुद भी सकारात्मक विचार से भरे रहेंगे और हमारे घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा, खुशनुमा बना रहेगा।
0: बिल्कुल, यानी बहनों व्यवस्थित जो रसोई होती है ना, वो देखकर मन भी प्रसन्न होता है।
1: जी जी
0: और आसपास की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती है अगर हमारे आसपास ही मौजूद हो तो काम भी फटाफट निपट जाता है।
1: जी
0: हाँ, जिस जगह से आपने जो भी बर्तन उठाया है उसे वापस उसी जगह पर रखना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको अगली बार जब भी आप सामान ढूंढेंगी तो उसमें समय भी आपका ज़ाया नहीं होगा, और जो प्लेटफॉर्म है या जो आपका रसोई घर है उसमें भी जो है कुप्रबंधन नहीं होगा। यानी
1: जी
0: और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो उन चीज़ों को जो है हम थोड़ा सा नज़दीक अपनी पहुंच में रख सकते हैं। इसी तरह जिन बर्तनों का इस्तेमाल बहुत कम होता है बहनों, या बहुत कम हम करते हैं, तो उन्हें हम अलमारी या जो रैक है उसके ऊपरी हिस्से में रख सकते हैं।
1: जी
0: साथ ही रसोई में या आसपास हमेशा एक छोटा सा स्टूल भी ज़रूर रखें, ताकि ऊपर से जब आपको सामान निकालना हो तो आपको जो है बहुत आसानी रहे, कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इस तरह से व्यवस्थित जो रसोई है अगर वो हमारी होगी तो मन भी खुश रहेगा
1: जी समय की
0: और
1: बचत भी होगी।
0: समय की बचत होगी, परिवार भी खुश रहेगा, और साथ ही साथ हम स्वस्थ भी रहेंगे।
1: जी जी बिल्कुल
0: तो अब कार्यक्रम का समय होने वाला है नीना।

तो बहनों, जो गलतियां होती हैं वो इंसान को सिखाती हैं, इसीलिए उन्हें कमज़ोरी नहीं बल्कि एक सीख के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इसी विचार के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की सखियों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन कार्यक्रम मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और

0: एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay.

दिन के 1:10 हुए हैं और फिल्म शिमला पर यह समय रहता है म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम का, जिसे लेकर आज मैं हूं आपके साथ शेफाली वर्मा। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम के गाए इस गीत के साथ। खुद गर्ज फिल्म से हमने ये गीत लिया है, आइए सुनते हैं।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: जी हाँ, हर गीत समेटे हैं अपने आप में कई मीठी यादें, जिन्हें सुनते ही हम भी इन्हीं गीतों के हो जाते हैं। वो हर बात याद आती है इन्हें सुनते ही और माहौल फिर से खुशनुमा बन जाता है। तो आइए ऐसे में सुने एक और ऐसा ही दिल छू जाने वाला गीत, क्योंकि ये शिमला का मौसम कुछ इशारा तो ज़रूर कर रहा है।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, यही वो गीत हैं जिन्हें गाया और लिखा गया है दिल की गहराइयों से, और हम भी खुद ब खुद जुड़ जाते हैं इन्हीं गीतों के एहसासों से।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

हर गीत की है अपनी पहचान और समेटे है ये अपने आप में ना जाने कितनी ही प्यार भरी कहानियाँ। तो आइए इसी बीच सुने एक ऐसा ही गीत जो छू जाए हमारे दिल को।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। कार्यक्रम का अगला सॉन्ग लेकर आए हैं आक्रोश फिल्म से अनुपम आमोद की आवाज़ है।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

103 दशमलव 7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं फिल्म शिमला। दोपहर के 2 बज चुके हैं। फिल्म शिमला पर ये समय रहता है सबरंग कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं टप्पे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एफएम शिमला पर सुन रहे हैं सबरंग कार्यक्रम। आइए सुनते हैं बाबुल सुप्रियो की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत।

0: 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दोपहर के 2:15 होने को हैं। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी

0: भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी @90 मैराथन का आयोजन किया। करसियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल।

0: यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दोपहर के 2:30 हुए हैं। FM शिमला पर यह समय है शिखरों के स्वर कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं कृष्णा देवी के गाए इस लोकगीत को।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में

0: आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: इसी गीत के साथ शिखरों के स्वर कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला, 3 बजने को है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला, डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है।

0: रविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। शिमला में कल देर शाम एक समारोह में उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर है और इस यात्रा में मीडिया, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों सहित युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। प्रचार अभियान थमने के बाद अब उम्मीदवार सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी केवल घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान चला सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 28 मई जबकि तीसरे चरण के लिए 30 मई को वोट डाले जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तीनों चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। राज्य के अन्य ज़िलों की तरह बिलासपुर में भी पंचायत चुनाव के दौरान मतदान से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक तौर पर प्रचार गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ज़िला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सभी उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल्लू ज़िले में पंचायत चुनावों के लिए 84 पोलिंग पार्टियां ज़िला मुख्यालय से रवाना कर दी गई हैं। ज़िले में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए 400 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निर्वाचन अधिकारी व कुल्लू के SDM निशांत कुमार ने बताया कि प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं के समुचित प्रबंध किए गए हैं ताकि मतदाताओं को असुविधा न हो। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने आज धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बिजली पर सबसे पहला हक प्रदेश की जनता का है, लेकिन आर्थिक तंगी का हवाला देकर सरकार लोगों का हक छीन रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर को लेकर भी जनता में भय का माहौल बनाया गया है।
1: आप आर्थिक स्थिति की आड़ में हिमाचल प्रदेश के नागरिक का हक उससे नहीं छीन सकते, जनता का हक उससे नहीं छीन सकते। इस सारे मुद्दे को लेकर के मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक आपका वायदा था, वो पूरा नहीं है। स्मार्ट मीटर के नाम के ऊपर आप जनता को धमकाते हो। ये सारे मुद्दों को लेकर के अगर आपने इसी तरह से जारी रखा तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए करेगी।
0: लाहौल स्पीति ज़िले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा के 71 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार इस्तीफे का मुख्य कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी सहित जिला भाजपा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ज़िला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, जबकि अन्य दलों से आए लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद लाहौल स्पीति की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि इसका असर पंचायत चुनावों के साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले पर पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: पंचायत चुनाव के चलते सिरमौर ज़िले में राज्य पथ परिवहन निगम की करीब 60 बसें चुनाव ड्यूटी में रहेंगी। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक रामदयाल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद निगम ने इन बसों को चुनाव पार्टियों को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए तैनात किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है भारत का बदलता मेट्रोलॉजी इकोसिस्टम। वाचक स्वर पूनम शर्मा।
1: भारत का बदलता माप विज्ञान इकोसिस्टम निष्पक्ष व्यापार, उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर रहा है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 ने एक आधुनिक नियामक ढांचे की नींव रखी है जो प्राचीन तौल और माप प्रणाली से विकसित हुआ है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी जैसी संस्थाएँ राष्ट्रीय मापन मानकों और सत्यापन प्रणालियों का समर्थन करती हैं। ये पहल वैश्विक मापन और गुणवत्ता अवसंरचना के साथ भारत के समन्वय के माध्यम से व्यापार में सुगमता को भी बढ़ावा दे रही हैं। मापन आधुनिक आर्थिक प्रणाली, औद्योगिक उत्पादन, वैज्ञानिक प्रगति और उपभोक्ता संरक्षण की नींव है। मानकीकृत मापन व्यापार, स्वास्थ्य अवसंरचना, दूरसंचार, ऊर्जा वितरण और डिजिटल तकनीकों जैसे क्षेत्रों में

0: के साथ भारत के समन्वय के माध्यम से व्यापार में सुगमता को भी बढ़ावा दे रही हैं। मापन आधुनिक आर्थिक प्रणाली, औद्योगिक उत्पादन, वैज्ञानिक प्रगति और उपभोक्ता संरक्षण की नींव है। मानकीकृत मापन व्यापार, स्वास्थ्य अवसंरचना, दूरसंचार, ऊर्जा वितरण और डिजिटल तकनीकों जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करते हैं। प्राचीन तौल और माप प्रणाली से लेकर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के प्रवर्तन तक भारत का मापन इकोसिस्टम निरंतर विकसित हो रहा है। ये विकसित होता ढांचा बदलती व्यापार प्रथाओं, उभरती तकनीकों और बढ़ती उपभोक्ता सुरक्षा आवश्यकताओं का समाधान करने का प्रयास करता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, जो हर साल 20 मई को मनाया जाता है, आधुनिक समाज में मापन विज्ञान के महत्व को उजागर करता है। ये दिन इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स द्वारा 1999 में स्थापित किया गया था। ये 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस कन्वेंशन ने वैश्विक रूप से एक समान और निरंतर विकसित होती मैट्रिक माप प्रणाली के लिए संस्थागत और वैज्ञानिक आधार सुनिश्चित किया। इस वर्ष की थीम मेट्रोलॉजी नीति निर्धारण में विश्वास का निर्माण, मेट्रोलॉजी की साक्ष्य आधारित और पारदर्शी शासन में भूमिका पर जोर देती है। मेट्रोलॉजी सामान्य लेनदेन और सार्वजनिक सेवाओं में सटीकता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करके दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। लीगल मेट्रोलॉजी प्रणालियां विभिन्न प्रकार के तौल और माप यंत्रों को नियंत्रित करती है। इनमें पेट्रोल पंप के यंत्र, किराना दुकानों के तराजू, आभूषण की दुकानें, अस्पतालों में उपयोग होने वाले यंत्र, बिजली मीटर, जलापूर्ति प्रणाली और पैकेज्ड वस्तुएँ शामिल हैं। ये सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को उनकी खरीद और सेवाओं के लिए सही मात्रा और मूल्य मिले। ये प्रणालियां कम मात्रा देने, गलत बिलिंग और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को रोकने में मदद करती हैं और इस तरह दैनिक वाणिज्यिक लेनदेन में उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करती हैं। सटीक मापन प्रणालियां सार्वजनिक कल्याण और सुरक्षा में भी योगदान देती हैं। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की स्थापना के साथ भारत की आधुनिक मेट्रोलॉजी यात्रा आकार लेने लगी। इसके बाद 1956 में स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट पारित किया गया, जिसने पूरे देश में एक रूपता स्थापित की। वैश्विक स्तर पर मापन के लिए स्वीकार्य मानक इकाइयां हैं। इन इकाइयों को ऐसे स्थिर वैज्ञानिक नियंताओं के आधार पर परिभाषित किया गया है जो कभी नहीं बदलते। इससे सुनिश्चित होता है कि मापन दुनिया भर में सटीक, एक समान और विश्वसनीय रहें। मीटर, किलोग्राम और सेकंड जैसी इकाइयां प्रणाली का हिस्सा हैं। ये प्रणाली विज्ञान, व्यापार, उद्योग और दैनिक जीवन में संगति बनाए रखने में मदद करती है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी भारत का नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट बनकर उभरी और मीटर व किलोग्राम के राष्ट्रीय प्रोटोटाइप की रख रखाव करने वाली संस्था बनी। रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज राज्यों में मानकीकरण और सत्यापन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए स्थापित की गई। ये लेबोरेटरी प्रयोगशालाओं और वाणिज्यिक व्यापार गतिविधियों में प्रयुक्त मानकों की तुलना और सत्यापन करती हैं। ईंधन वितरण यंत्र, पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने वाली मशीनों का नियमित सत्यापन और कैलिब्रेशन किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ताओं को मशीन पर दिखाए गए ठीक ठीक मात्रा के ईंधन ही मिल रहे हैं। जल और बिजली मीटरों को खपत को सटीक रूप से रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि बिलिंग में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दिन के 3:10 हुए हैं FM शिमला पर। यह समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं पतंगा फिल्म का ये गीत। शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजें हैं। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्रा।
3: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

एक से बढ़कर एक गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला गीत लेकर आए हैं बरसात फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार हैं रमेश शास्त्री, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: ये तस्वीर तो मेरी है।
3: नहीं, ये तस्की है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है, और इससे मैं कहती हूँ

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। दिन के 3:30 हुए हैं एफएम शिमला पर। यह समय है युववाणी कार्यक्रम का।

अंकुश लेकर आ गया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे और इस भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी निकाल पा रहे होंगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम सुबह उठते हैं, आसमान की ओर देखते हैं, कभी खिली हुई धूप होती है तो कभी अचानक काले बादल लाकर पूरे प्रदेश को अपने आगोश में ले लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये बदलते हुए मौसम हमसे क्या कहना चाहते हैं? ये बारिश, ये हवाएं, ये धूप, ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये हमारी जिंदगी के जज्बात हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है मौसम का विज्ञान, यानी कि वेदर साइंस। आज हम मौसम से जुड़े कुछ दिलचस्प विज्ञान और मौसम के साइंटिफिक रीजंस को भी टटोलेंगे जो इस कुदरत को चलाते हैं। इस खूबसूरत सोच के साथ आपसे ढेर सारी बातें भी होंगे और सुनवाएंगे आपको कुछ मधुर गीत। तो चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत के साथ।

आज हम बात कर रहे हैं मौसम की। कभी सोचा है कि ये मौसम साल भर बदलता क्यों है? साइंस कहती है कि हमारी धरती सूरज के चक्कर काटती है और अपने अक्ष यानी कि एक्सिस पर थोड़ी सी झुकी हुई है। बस इसी झुकाव की वजह से कभी दिन बड़े होते हैं तो कभी रातें। सूरज की किरणें कभी सीधी पड़ती हैं तो कभी तिरछी, और इसी से जन्म लेती हैं हमारी ऋतुएं, जो कि है गर्मी, सर्दी और बहार। आजकल जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ना, हम सबको मानसून का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। पर कभी सोचा है कि ये मानसून आता कैसे है? इसके पीछे समंदर और हमारे इन पहाड़ों की एक बहुत पुरानी प्रेम कहानी है। जब गर्मियों में भारत के मैदानी इलाके सूरज की तपिश से बेहद गर्म हो जाते हैं, तो वहां की हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे लो प्रेशर बनता है। इसे भरने के लिए समंदर से ठंडी और नमी से भरी हुई हवाएं पहाड़ों की ओर दौड़ी चली आती हैं, और जब ये हवाएं हमारे इन विशाल पहाड़ों से टकराती है तो पहाड़ उन्हें रोक लेते हैं। हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और बादल का रूप ले लेती है, और फिर झमाझम बारिश बनकर धरती की प्यास बुझाती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और गीत। बने रहिए FM शिमला के साथ।

अभी हमने बात की मानसून की, लेकिन ये आसमान में तैरते हुए बादल आखिर बरसते क्यों हैं? विज्ञान कहता है कि समंदर का पानी जब भाप बनकर ऊपर उठता है तो हवा में मौजूद धूल के कणों से मिलकर बूंदें बनाता है, और जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि हवा इनका वजन संभाल ना पाए तो ग्रेविटी की वजह से बरस पड़ती है। हमारे हिमाचल का मौसम तो पल भर में बदल जाता है, अभी धूप थी और अभी कोहरा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई के कारण हवाएं तुरंत ठंडी होकर ऊपर उठती हैं और बादल बन जाती है। ऊपर से यह घाटियां नमी को लॉक कर देती है, जिससे मौसम अचानक बदल जाता है। और हाँ, यहाँ बादलों की गड़गड़ाहट इतनी डरावनी क्यों लगती?

कभी गौर किया है? क्योंकि ये घाटियाँ नेचुरल साउंड बॉक्स जैसी हैं। जब आवाज़ पहाड़ों से टकराकर बार बार गूंजती है तो कई गुना बढ़ जाती है। और रही बात उस कड़कती हुई बिजली की, तो बादलों में तैरते हुए कई छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जब आपस में टकराते हैं तो उनमें एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। बस जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिले, आसमान में एक विशाल शॉर्ट सर्किट जैसा होता है जो बिजली बनकर चमक उठता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ों का मिजाज और इंसान का मूड कब बदल जाए कोई नहीं जानता। आइए सुनते हैं एक और गीत।

ट्यून इन है आप एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है युववाणी और आज हम बात कर रहे हैं मौसम पर। दोस्तों, आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, रेडार्स हैं, जो हमें मौसम का हाल बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज ये काम परिंदों को देखकर करते थे? जी हाँ, विज्ञान भी मानता है कि पक्षी कुदरत के सबसे बेहतरीन मौसम वैज्ञानिक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी तो ये भी कहती है कि पक्षी सैकड़ों मील दूर उठ रहे तूफान की इंफ्रासाउंड यानी कि बेहद कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ों को भी सुन सकते हैं। वे तूफान आने से 24 घंटे पहले ही सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं। लेकिन असली जादू छुपा है प्रवासी पक्षियों में, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स में। ये नन्हे परिंदे सिर्फ मौसम बदलने के डर से नहीं उड़ते, बल्कि उनके भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जब साइबेरिया या यूरोप में कड़ाके की ठंड पड़ती है और बर्फ जमने की वजह से खाना खत्म होने लगता है, तो ये पक्षी हजारों मील दूर हमारे भारत और हिमाचल के जलाशयों जैसे कि पोंग डैंग की तरफ रुख करने लगते हैं। ये परिंदे हवा के रुख और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से अपना रास्ता तय करते हैं। लेकिन अफसोस, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रकृति का यह सटीक सिस्टम अब बिगड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पक्षियों का यह नेचुरल वेदर सेंस अब डिस्टर्ब होने लगा है। वक्त आ गया है कि हम तकनीक के साथ साथ कुदरत के इन इशारों को भी समझें। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए एफएम शिमला के साथ।

दोस्तों, आज हमने युववाणी के इस कार्यक्रम में बात की बदलते मौसम की, मानसून की, मानसून के पीछे की साइंस की और हमारी जिम्मेदारी की। वक्त आ गया है कि हम प्रकृति की इस पुकार को सुने। प्रकृति को काबू करने की कोशिश मत कीजिए, उसके साथ जीना सीखिए, क्योंकि जो इंसान कुदरत के हर रंग को संभालना सीख गया वो जिंदगी जीना सीख गया। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं हूं अंकुश, आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय इसी कार्यक्रम में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं फिल्म शिमला। शाम के 4 बज चुके हैं। फिल्म शिमला पर यह समय रहता है फिल्म संगीत का। कुमार सानू की आवाज़ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत आशिकी फिल्म से।

कार्यक्रम का अगला गीत फूल और कांटे, फिल्म से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ें हैं, गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। शाम के 4:20 होने को हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। इनमें सबसे पहले सुनते हैं सिरमौरी कार्यक्रम।

एतला फिर से जू प्रचार सो से थम जाना। एवे इंदे के बाद एवे जू भी उम्मीदवार सो से ना तो मीटिंग कर सकते, ना रैलियों के माध्यम से चुनाव प्रचार कर सकते, और ना क्यों भी प्रकार के लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार कर सकते से। इंदे जू दूजे चरणों के चुनाव से 28 मई दे होंदे और चीजे चरणों के चुनाव से 30 मई दे होंदे। जू राज्य चुनाव आयोग है पंचायती राज चुनाव की भद्य तैयारी से पूरी करित हुई। यों तीनों चिन्ह चरणों के कुल 21,678 मतदान केंद्र दे चुनाव ड्यूटी के करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती हुई। जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं जैसे हिमाचल प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, साथ ही ओके जो तड़वी राजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षाएं से 18 जून से 27 जून जाऊँ आयोजित होंगी। जो परीक्षा का आयोजन है से जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय संजोली दौंदा। पंचायत चुनावों के कारण जो जिला सिरमौर के राज्य पथ परिवहन निगम की करीब 60 बसों से चुनाव ड्यूटी दी होंगी। जो निगम का क्षेत्रीय प्रबंधक रामदयाल बुलो की चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद निगम में इन बसों की ड्यूटी से चुनावी पार्टियां मतदान केंद्र जाणों की सत्थी तीन पाछुल्याणों की थोई करे। निगम प्रबंधक के बुलो जयों अवधि के दौरान यात्रा की योजना आगे से बनाओ सत्थी विभाग के सहयोग करने की अपील था करे। तो ऐसे कुछ खबरें सुनी तुए तो तुम सब भी साथी बातचीत तो जारी रहे, पर तुए इंदे साथी तुए सब जुड़े सुनो एक बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत।

तो ये भी तू ये सब भी सुनो, एक बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत। तो अबे तू सब भी साथी बातचीत कर बे कॉमनवेल्थ दिवस के बारे दे। तो जैसा तू सब भी कोई पता सो जे एतलो 24 मई सो, और एतलो की दसो दे भारत साथी से विश्व के अलग अलग देशों दाए से राष्ट्रमंडल दिवस या कॉमनवेल्थ दिवस के रूप दिलो मनाए। क्योंकि जब हमें सब जुड़े राष्ट्रमंडल शब्द सुनो तो हमारी मनो दो इतिहास की कोई पढ़ते सामने आओ। क्योंकि एक ऐसा दौर थिया जब है इन देखे साम्राज्य की शक्ति की रूप दे देखो थिए, लेकिन जो एतलो है राष्ट्रमंडल से पूरी तरह अलग सो। क्योंकि एतलो 56 स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों को जो एक ऐसा मंचो सो जिंदे एक दूजे के सहयोग लोकतंत्र साथी विकास की राह दे अगुल आगे बढ़े। तो अब सब जो बे समझोबे कि भारत की इंदी का भूमिका सो जो इंदे की शुरुआत से 1902 दे रोथियो है। क्योंकि तो दी इंदे के शुरुआत से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति एकजुटता दिखाने की ताई था थे करे, और तो दी एम्पायर डे के रूप मनाओ थे थू। लेकिन जो 24 मई को देश से तबे तो चुने, क्योंकि जो यो देशो है से महारानी विक्टोरिया का जन्म रहा है। जैसे जैसे समय बदला तैसा तैसा 20वीं सदी के मध्यम दे दुनिया के नक्शे से उपनिवेशवाद का भी खत्म हुआ, और साथ ही साथ ही भारत जैसे देश भी आज़ाद हुए। जब जो 1958 से ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेरोल्ड मैकमिलन ने इंदे को नाम बदलियो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ डे थू। इंदे के बाद 1977 दो औपनिवेशिक अतीत की यादों को पाछू छोड़ने की ताई है राष्ट्रमंडल सचिवालय मार्च भी ने के दूजे सुहा रहे इंदे को इंदे मनानों का से फैसला लुआ। लेकिन जो भारत देश ऐसे अपनी ऐतिहासिक और निरंतरता और परंपरा ध्यान दे थो इंदे की तारीख से 24 मई थे, तबे ये तो भारत ऐसे जो देश लो मनाए क्यों भी साम्राज्य के जो याद देशे, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के समूह दिया अपनी मजबूती और बराबरी की हिस्सेदारी के जश्न के रूप दो से यतलो भारत है ये जो देश लो मनाए। तो अबे देखवे जे एतलो का राष्ट्रमंडल असो का है, तो एतलो ऐसे एज राष्ट्रमंडल पूरी दुनिया की एक तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करो। जी देखे हमें बोल सको जे लगभग 270 करोड़ लोग एतलो यो परिवार का हिस्सा असो। और इंदे साथी तू सब भी खे जानियो जे ऐसी खुशी और लेजे पूरी यो 270 करोड़ आबादी का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ हमारे प्यारे भारत देशों का देशों धरू यो लिया शायद से भारत राष्ट्रमंडल।

तो ये भी तुम्हें सभी सुना बहुत ही बढ़िया एक सरमरी लोकगीत। तो अब तुम साथी अपने बातचीत जारी थों बे एवं बातचीत करवे तुम साथी सहकारिता साथी विकास के बारे दे। तो जैसा तुम सब भी कोई पता सो जो भारत देश ऐसे एक कृषि प्रधान देश हो सो, क्योंकि इतने के ज़्यादातर आदमी कृषि गशी निर्भर हो सो। साथी से कृषि साथी पशु भी पालो, छोटे छोटे व्यवसाय करो। इन्हीं सब भी आदमी की तई है जुन जे भी लोग गाँव दे रो तीन के सहकारिता से बहुत ज़रूरी हो सो। जय बात लाऊँ बे तुम सब भी साथी जय एज ए सहकारिता सो का है। तो जय इंदे के मतलब के बारे में जानना चाहूँगे तो इंदे का आसान सा मतलब हो सो, जियोड़े भी आदमी हो सो से चाहे क्यों भी काम करो से भाद्य जुड़े मिले जुले काम करना ही सहकारिता का मतलब हो सो। इंदे का जो मुख्य उद्देश्य से ऐसा हो सो जय सभी लोगों का एक बात विकास ही।

ते कार्यकर्ता का मुख्य लक्ष्य सो जू एतलो कि टाइमो देसे सहकारिता सिर्फ कृषि जाँ सीमित ना थी बल्कि एवे हर एक क्षेत्र देसे सहकारिता फली रोए जैसे दूध उत्पादन उपभोक्ता भंडार महिला समूह साथी साथी छोटे छोटे उद्योग भी इन देशे पाछू रोए न रोई क्योंकि यो सहकारिता लोइए से एतलो समाज साथी देशों के भी एक महत्वपूर्ण साधन के रूप दे सामने लग गया है जू ऐसे सहकारिता शब्द से दू शब्द से मिलियो बने सह और कारिता जू सह का अर्थ से साथी मिलियो और कारिता का अर्थ सो से काम करना सो तो इन्हें का सीधा सा और आसान सा मतलब ऐसा हुआ जय मिले जुलियो काम करना ही सहकारिता सो तब ही ऐसी सहकारिता सफल साबित होंगे क्योंकि इन्हें का आधार ही आपसी विश्वास सहयोग साथी समानता सो जो यो सहकारिता दाय से सब भी आदमी है बराबर का हक हो इंदे ना तो कोई आदमी बड़ा होंदा ना कोई साथी छोटा होंदा कोसी भी आदमी के क्यों भी ऐसे अधिकार होंदे ने जो कोसी छोटा या बड़ा बना ला जो यो समाज दे से सहकारिता का एक महत्वपूर्ण भूमिका सो क्योंकि जो इंदे लो ऐसे गरीब और जो कमज़ोर वर्ग के आदमी हो से भी आर्थिक रूप से मजबूत बन सको क्योंकि सहकारिता दे आर्थिक सहायता भी भेटो भारत देशों दे से आज देश ज़्यादा जनसंख्या से अतला गांव दे रू हो और इन्हीं सभी गांव के विकास की ताई है से सहकारिता साथ विकास करना बहुत ज़रूरी हो सो क्योंकि जो यो सहकारिता लो ये से सभी किसानों के नई नई तकनीकी भी भेटो शेखणों के जिंदे लो ही गाँव का विकास हो और भाद्य गांव ऐसे आगु बढ़ ले भाद्य जोड़े मिले जुले काम कर ले क्योंकि जो यो सहकारिता लो ऐसे सभी लोगों के भाईचारे और एक दूजे के सुख दुख दे काम आने की भावना उत्पन्न हो जब भाद्य जोड़े एक दूजे के काम आले तो इंदे लो ऐसे समाज दे एकता भी बनी आंदी रोले तो ऐसे बातचीत करी तू सभी साथी मुँह सहकारिता साथी विकास के बारे दे तो एवे तू साथी अपनी बातचीत जारी रह ले पर सब साथी तुम्हें सब जुड़े सुनो एक बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत।

तो इयो गीत और बातों के कार्यक्रम का वक्त हो जाला खत्म। एबे तुए भद्दे सिरमौरी कार्यक्रम सुनने वाले मुख्य दी इजाज़त, तुओ सब बिखे राम राम।

नमस्कार जी, कार्यक्रम महासु सुनिया तुम बदे जुनरा आ तुम्हारा दोस्त तुम्हारा साथी संजय पांडे तुम्हारा खूब स्वागत करूँ। बुद्ध शुक्र त्वारे ए चंदिस हफ्तरी हमें तुम दजो मिल सकूँ। बिल्कुल जी, देखो अबे बोली भी तो दी खूब तप गई हो तपिब से ही, पर अशो जो मौसम विभाग बोलो चेतावनी दियो जे बिगे तापणवो और जान वो जी और तो ना तो बिग तप से ही, पर कहीं जद से हो लगी हो कहीं जे ना सुर ने ही उन्द बुछदा ना बरसात पड़ दी ना तो दी तप दी या उत हो या उन्द भी नहीं, पर हम यही बोलू मारे तुमको सुनया है जे खड़े तबोरे खिंचो दो इस वक्त है खास करियो न्यूल वाले वहाँ टीरो माचो जदू काम नहीं करनो ए भी सब पूरु झेलियो नानी जवाने हो जानू खून हो पूरु झेलियो, पर अरा बीपी री शिकायत या रोशोरे माइग्रेन एज समस्या हो जब बेगे दौद तपी भैंस रे उठने से ही जी शिकाम क्यों नौ दस वर्ष तक ठीक हो तो आज ना ही है अपना काम आराम किया तो फिर डे तो पाँच एक बजे डे छः सात आठ बजे तक काम करियो नौ बजे तक बल्कि तो धीरे आजकल जो निवड़े माछ हो से काम फिर करो। बिल्कुल जी,

शकंवर, निशाबाला, किरण भारद्वाज, मंजू तोई साथी एबे की खास खास खबर जी प्रदेशोदय होने वाले जो पंचायत चुनाव जो 26 मई को तैंक जो पलके चरण उणा चुनाव प्रचार एबे आज तो बंद हो गुआ उम्मीदवार एबे जेरी कती सार्वजनिक सभाएं हुई रैलियां हुई लाउड स्पीकरों के हरी प्रचार नहीं कर सकता एबे उम्मीदवार घर घर डाइयो बुटो मांग सको तो दूजे चरण जो होना 28 तारीख होना चीजे 30 तारीखे होना जी चुनाव इन एक राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज चुनाव की तैयारी जी पूरी कर पाई इन जो मारे ग्राम पंचायत हुई पंचायत समिति तो जिला परिषद रे मतदान मछरे देना चुनाव आयोग रे पूरे प्रदेश 21,678 मतदान केंद्र लायो साथ ही चुनाव ड्यूटी जो 35,000 तो ज्यादा कर्मचारी इंधे लगे तो अगली खबर सो भारतीय प्रशासनिक सेवा हिमाचल प्रशासनिक सेवा तहसीलदार वा तो नायब तहसीलदार वा तो राजपत्रीय अधिकारी जो विभाग और मत्यान 18 जून दो 27 जून तक चलना हो परीक्षा राजकीय महाविद्यालय संजोली आनी परीक्षा जो समय सारणी जो मतलब टाइम कार होना से तुम्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान वेबसाइट वगैरह देख सको राज्यपाल कविंद्र गुप्ते इन धनरा संरक्षण तो नशा मुक्ति री तैंक कोड़े प्रयास करने को बोलवो तिन्हें बुके बोल दिया शिमले राते चाले एक समारोह दे तिन्हें बोलू जे देश विकसित भारत 2047 तक रखना मरा लक्ष्य वास तो इजी यात्रा दे मीडिया हुए उद्योग हुए बड़े बड़े शिक्षण रहे संस्थान हुए तो समझ रहे सामाजिक संगठन हुए साथ ही देश रहे युवा न छोकरी भूमिका भी जरूरी सो राज्यपाल बोलू जे माठे माठी कोशिश पाए कि बड़े काम बन सको साथ ही पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग अलग हो पर्यावरण बचारण तक हम बेगे काम करना पड़ी और दूसरी ऊर्जा सुरक्षा शब्द जरूरी सो तिने बोल ईंधन रा कम खपत करने इन आवश्यकता देने मारे बदरी है जिम्मेदारी असो देखो जी एतोते की खास खास खबर खेलो इंडिया बिल्कुल जी खेलो इंडिया मतलब एज ए छोटू नशे विषय तो जो दूर रह सको तई बोली खेलो इंडिया 2018 दे एज ए पहल शुरू की थी जमीनी खेल स खेल जो हमें भूल गए आज ही जो बिल्कुल जी इंदे तेरे तेरे खेल ले आओ खेलने का इंदे छोट जो खेलने आयो प्रतिभावान खिलाड़ी हो से 8 वर्षों तक इंदे खेल सको हर वर्षो तीनों 5 लाख रुपये री वित्तीय सहायता देनी हो बिल्कुल जी ए राज्य राष्ट्रीय स्तर के छोट इंदी खेल सको और इंदे वहाँ जरा नहीं हो वहाँ छोटू या छोटे कौन वो सको खेलो इंडिया अभियान इन बदे आ सको और चैंपियन बन सको और छोटू चैंपियन बनो बनो या का कोशिश करो तेके मदद भी इंदी मिलने ची तो एक बात आदिवासी खेल का बढ़ावा देना इंडा एक एक खास मकसद असो स्वदेशी खेल ये खेल जो मार देश दे खेली गाँव दे खेली खिलौने पारंपरिक खेल गाँव दे खिलौने इंडा मकसद का शरीर फिट रखना तो शरीर ठीक रहो तंदुरुस्त रहो गाँव छोटू भी तो ही तुम कि देश सोच सको नशा विषय दूर हो सको और अपने अपने समाज तक बढ़िया काम कर सको इंदे सारे खेल 28 खेल इंदे तेरे लुए गए ट्रैक फील्ड ओ एथलेटिक्स बोली तैराकी हो वाटर स्पोर्ट्स हो गए तीरंदाजी हो गए कुश्ती भारोत्तोलन हो गया मुक्केबाजी हो गए फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन हो गो टेबल टेनिस हो गो टेनिस हो गो बास्केटबॉल वॉलीबॉल जिम्नास्टिक वो हो गो जूडो हो गो खो खो हो गो कबड्डी साइकिलिंग सेपक टकरा जो से तुम्हें और प्रॉपर का होते हैं खींचो खेलो इंडिया यूथ गेम यूनिवर्सिटी दी गेम ए भी और सको जी अरे शुरुआत 2018 दे और पोलिए बोल तुम्हें दस वक्त खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर नई दिल्ली ने शुरुआत की थी अब तुम्हें क्या कर सको जो खेलने शौक हो

या बढ़िया खेलो, माई भारत पोर्टल एंगे डेओ खेल इंडिया टैलेंट हंट वगैरह अपना पंजीकरण करो। बिल्कुल, माई भारत ऐप पोर्टल खोलो, खेलो इंडिया के अपना पंजीकरण करो और तुम ये खेल दे या ट्रेनिंग कर दे डेव सको, बढ़िया खेल खेलो रे। और देखो आज ही जो खेलो दा एक बढ़िया धंधा बन गया आओ कैरियर, नहीं बोल भी से बड़ा बढ़िया कैरियर, साफ सुथरा कैरियर। 17 वर्ष हो कम स्कूल रे छोटू और 21 वर्ष हो कम कॉलेज रे छोटू, बिल्कुल इंदी दे सको। ऐ का सही तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं का सर्टिफिकेट, बोनिफाइड तुम्हें कहते रहो, बस एड़ चाहिए साथ ही आधार कार्ड और बदल बनो ही बन दो। जरूरी खेलने तो खेल लो, चाहिए वहाँ के खेलो और शौक और जज्बा खेलने रहते हैं, पोर्टल लोगे दियो लॉग इन करो, बढ़िया खेलो। जो तुम्हें बढ़िया खेलो अपने स्कूल रो देश रो नाम रोशन कर सको। बस हमें यही बोलूँ जे नशे विषय तो दूर रहो, एक जाओ ध्यान दियो, बढ़िया धंधा चाल सको, अपनो अपने गाँव रो देश रो नाम तुम्हें रोशन कर सको। गोले बात रोने थे मारे चले दो एक बड़ा बढ़िया लोकगीत तो तुम्हारे कलाकारो मदन झाल्टा जी।

खाए गाले जोइंतीरे भेषे। बड़ा बढ़िया लोकगीत भी हमें जीवे सुना। एक कहावत दो ना बोलो, माछ जो संगीत साहित्य दोस्त और रुच नहीं आते नहीं तिसके बड़ा बढ़िया माछ नहीं बोली। बिल्कुल तुम्हें वहाँ आई पढ़ सको देख सको जो संगीत और साहित्य दो बिना माछ रो से इरा बोली जे जीरा बिणी पुनरीरा बोल दो। बिल्कुल तिसके खा बोली तुम्हें बोल सको ए बे आज ही जो मारे तुम्हारे काज खिंचो खो पियो खाद्य पा। बिल्कुल बोरी खाद पा पाओ कीटनाशकों पा पाइयो दवाई डाल डाल लो जो अशो दस कटे बोरी मटर हुए तो गाँव 15 साऊँ 20 साऊँ पर से दस अलग नौ नौरे अलग 8 कहीं जे हमें खिंचो जादी रसायन पा खत्म कर पो। अरे बात नहीं जे केमिकल रसायन मारे चीज़ों पर अति मारियो कहीं जे आज ही जो मारे से बात खिंचो दिन नहीं रहे जो पलियो होती। बिल्कुल तई कि पलि एक जैविक खेती आज ऑर्गेनिक खेती नाव अलग अलग अब प्राकृतिक हमें शुणु तो लोग बेगे पर हे अमल अलग आ बड़ा कम समझ आज जीरो लागत खेती जैं सिफर पैसा लगना खेती तैयारी हमें भाषण दे पिए कर लो पर कोशिश करूँ हमें बड़े कम सम आज तो ही बोलूँ हमें इतो कि दो बही तुम लोग से कि करो बड़ा कम खर्चा गोरे जे कसरे पड़े गाओ नहीं जर्सी गाओ तीन गोबर। बिल्कुल जी कोटो करनो 8-10 किलो गोबर कटे किए हकड़ो गाँव कोटो क्यों ड्रम भरन। बिल्कुल 8-10 किलो गोबर 5-6 किलो गाँव से एड कर सको ड्रम भरो 1 किलो गुड़ पिया गुड़ साथ ही 1 किलो साफ माटा जो रसायन नाव कतो जंगल साफ माटा पो हकड़ो बेसन पो जो सको तेना गोल्टे होना चीन 1400 रन देना और तो ना हफ्तेरा से चीन 1400 रन देना और से चीशे से खूब मिलायो 200 मिलीटर ड्रम दटियाँ तो अपना जड़े जड़े दा फसलरी सेवो वहाँ नाशपाती वहाँ पोलमो या तुम्हारे कहीं तो ये लो दो तई पा काजे ताकत मिलो फसले जड़ दे रंग बुणो फसलेरा और वखड़े बोली साइज बुणो। एक दूजी बीन मटर मारे फसल लाइद शिमला मिर्चो हम तो स्प्रे करूँ या जो जिन स्प्रे करूँ तो भी सेव लाद होते तो भी सेव दे दियो और तो फसल सेव खराब होते माइट लाखो। बिल्कुल या भी सेव दे के थोड़े माइट लाखो जो कीटनाशक स्प्रे के तो क्या करूँ गोरे कहते बैठ के खाटी छाश हो तुम रहे से करनी जो जो दो चीज सॉरी कटे के खाटी छाश के तीन दुता मरा पे लुड़ लुटा दे के होंगे या छोड़े थे कि अकड़ा जे तो माँ की बनाओ अकड़ जो गाँव छू तई मिसे जे गाँव छू बनाओ तो खट छाश के 10-12 लीटर 15 लीटर तई मिसे तंबा पी अकड़ा भाबर पिया दिन था तई पाए पिपड़ी तो छानियो जो दो चीन जो बस बस ही तई स्प्रे करने सारे थे जी। बिल्कुल जी एरा बढ़िया है ये पा का जो मीन मीन कीड़े हो ना सतमर ना पूरे जो मोटे मोटे कीड़े हो से पूरे बिछो क्योंकि इंदिया रे बोल भी इंदी गाँ दी अरे छोड़े हो जो कीड़े कुड़े लग रही सही जगह के दियो तुम्हें फौसले का नुकसान नहीं करते। एक दूजो अर्क अर्क के राह बोल भी जमार गिरी फसल पिंजरे को हमें सिंज बुलाओ खाद दे पायो ना पता का बात वाले जो पोषक तत्व ना मटे भी से खत्म हो जा पोरे तई का करो तेरे गुबशो ना गुबशी दो आगे बटे निकलो चीज दो या तई कुली अर्क सकरनु के रुको जब तुम रखे तो ट्यों दो कंचो शट ट्यों दो तीन जो गप से गया तुम्हें चीश पाओ या छाश पाओ जो गप से दो आगे बैठे चीश निकलो तई अर्क बोली जैसे कि तो 500 लीटर में होगो कुठो से ड्रम दो पान लो जो तो 10 लीटर होगो तो सुन गए स्वागा तेरी स्प्रे करने तो देखे तुम्हें रंग के रहा निकलो। बिल्कुल फसल गिरोले कलगे रे कह काले गिरोले फसल साथी ग्रोथ पावाले फसल अर्क बोलिए एक बायोजाम हमें तुम्हें जो दवाई ली बायोजाम ए वैसे बायोजाम। एक दूजो गोछड़ो बिल्कुल मारे पानी हो उबर दियो ले दो गोछड़ो कोठी करनी बाल्टे या टप क्यू नतीजे से कुआ खूब कोई 8-10 गोछड़ो एक

0: बिल्कुल जी, बिक्रमा भाई आ भी हमें एना टिशोणी एक बात करूँ ड्यून ड्यून आ आजकल गर्मीना महीना जगह छाओ छाशो सपिन से ही तुवर भी जिश भी और फिर भी कहीं जाइए तासीर छोले रहो तासीर छोले रहो तो दिमाग भी ठीक रहो। ठीक हो जी, यही गल बात साथ है अपने दोस्तों तुम्हें मुझे इजाजत बदे शून्या तुमक जीवे राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे महास्वी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं किन्नौरी कार्यक्रम।

Kinoring program Ronchit se bai sai kinya se kinu dan kumariu namaskar dok bai sai kinya damte chae ga asha landak neo kinya se ki razi khusi snitich dang si dok dais kamano thonang tota program li ronchunitich bai si dok truksu programo sodek sukata share share gi thanga ta kashi dito dokait pardesho khas khas khobar nang eke जो मनारिंग जानू खेंता जो मौस वास्ते प्रति जो जागरूक हाचम गया में जो बारे उली दाइस जानकारी काशी तो आए तो खेंता भाई सही काशा जो फाइलो सु बारे बत्याशमा तंग मामदे जो काशानू फाइलो खासकर जो पावगानो नंग रंग सारिंगो जो कई औषधीय पौधे नंग जड़ी बूटियां नीज जूत से ही जड़ी बूटियां थेत ना थे डॉक्टर गुतागेस शेल्फ हन चीदे नीस मंदे लेकिन दो तांगे जो जड़ी बूटियां नू सही पहचान नंग जानकारी गया मी वाल जरूरी नीस मंदे बैसी दोक हलिंगा ख्यांता जो ओमी ओमी शोंग डॉक्टर नंग अस्पताले नू थसी सुविधा मानी मु बेरंग आमजी गास दोक जो जड़ी बूटियां नू शेला जुरियास तोच होदो म्यक्षोंग दोक आमजी शेला नसी मीनू इलाज हाजी तोस आई दोक आमजी गास लांछित इलाज मीनू वाली

वैसे जो रंगमो जो कई लाभ तो छा लेगा दो रंगमो जो कमजोरी नंग थकान वर्क लानो तांगे सहायक नीस आज जो पाचन तंत्र मजबूत हाचित निमोनिया टो दू तांगे स्टोक रंगमो वाली फानवा नीस नाशित मदे आयुर्वेदिक नंग जो पारंपरिक चिकित्सो तांगेस रंगमो जो प्रयोग वाल हाचित हदे सी दो रंगमो वाल महंगा रेशित मदे हुनाओ बेरंग जो छाशित रंगमो मदे जो सोनिश निजा 1,000 रुपया किलो बिके दोनों बैसी दोक आयत खेंता जू रतन ज्योत बैसी जू रतन ज्योत इत आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ने हो रतन ज्योतु काशा दोक खोमे लो समदे जू कोमो दोक खनिज नंग विटामिन वाल बोदी नीच रतन ज्योतु तेलंगू कोमो शेषे तोक जू गाटो छांगानो मालिश लाना हारंगा पाका हाजित आई तो क्रागुल चोनीमा दो तांगे स्ली वाल फायदा नीच करा रोकता हाची सी दंग सी दो करा गोन साचित करा बोल्स आई तो जू दोक दिलु स्वस्थामु तांगेस जुरतन जो तू जिले मुटी ओ टाक टाक दोक दो रस तुम्मा तोक वाल फानवानी समदे बैसी आयत ख्यांदा जू खास बाल रिंगो खास बाल ली जू पावंगा नोई नीच नियो खास बाल ऊ दोक सामुकता ने नीच खास बाल दोक हम दोक नाशंग भी नीमा पारंगा नो तांगे स्नंग हम थे दोक मलशस पोलास डागम माशकोना देरंग दोक जू खास बालू सामू तोता मदे दोक खोदो जागो शेन्ना तंगमा हदेरेंगी पोलास बंधा चीत पावंग शोंग जेदा नु चोट लगेना खास बाल दोक वाली फांची देनीस आयत खैन जू ग्यालची रिंगो ग्यालची ली पावगा नुई पोरेस तो ग्यालची जेता दोक वाल वार क्यों बिम ग्यास मदे पावगा नुली वाल आसी जागो दोक इत जू वाल एम गानम से ऊ निस जू काशा नु खेन ता ढखरे नो शू नु दोक जू पुल मु तांगे स्काच उख्यो दा कासी काच जू ग्यालची उची खेन ता जू सेमचेना नु ची फोंगमा मदे आई दोक दस लगे ना देरंग दोक ग्यालची वाल दाम शेल नीस नियो बैसी आई जू लाल चूड़ी रेंगो खेंता जूली दोक इत जड़ी बूटी मने जू बोधी वाश खेंता जू वंग पो का चंग पावंगा नो नीच चूड़ियों रुंग से निमिक देन जू नामंग लाल चूड़ी ताशित लाल चूड़ी जू हर टॉत यानी जू एलर्जी देस के टोदानु तांगेसली वाली फानवानीस मदे वैसी आयत जू खेंद काशानु साफाल नंग पाऊ मदे जू निश की पावंगा नुई पोरेस ने ओ साफाल नंग पाऊ दोक खाना ओशे ना खाऊ एम दा हाचित ही हाचित आई दो नंग एके खाना पास यामु तांगे सली वाल दाम शेल नार्शित मदे आयत जू गांठुंग ची रिंगो गांठुंग ची तंग जू छिक ची डी लोसने ओ सेमचेना नु बांगा रंग मा तंगमा तेतरा छिक रग रग दुख्या ख्या दोक दो तंग सुच मदे आयत खेंदा जू पतीश मदे पतीश जू खेंदा जू नेसंग का चंग पोरेस ने हो पतीश ली तो खारोस कोट्टे आतोन गयास जू तो उश नीमा रोक देस नीस तो न्यूंग नीमा से तो बांठस नीस मदे पतीश बुखार नंग ने मुनिया टो दू तांगे सवाल दाम शेल नार्शीत आयत खेंदा वैसी जू सूर्स रिंगो सूर्स जू सेमसेना नू तांगे सवाल दाम शेल नीस ने हो सेमसेना नु दोक पेटंग डान डान नीमा तंगमा सूरचु ती रन्ना पेटंग डानम शो बीस मदे बैसी दोक आइत खेंता जू बाटिक्स ऊ रिंगो बाटिक्स ऊ पीक बाटिक्स ऊ कता वाल शारे गाट उदेस ऊ नीस नियो गुदा बांगा नु बाया पोटोक साचस नीमा बाटिक्स ऊ मे रन्ना दोक दो शो बीस लेकिन दोक मे रान रान युम सवाल ध्यान ताम ग्यास न्यो कि मे रान छित जागो का तई दोक ती माशन ग्यास नीस ती भी मातंग मा तर लोआस दोक आई दोक राशन केस दोक जू बाय आली दोक पूरा खत्म महाचित मदे आयत खेन ता जू का शानु जू जोल शीत रिंगो मदे जू जूली जड़ी बूटी वंग पो पावंगा नुई नीस न्यो हुनाओ बेरंग बाजारो जू डिमांड ली वाल बोदी ने काला मोरा चोंगरी नर बीश रिंगो जूत से जड़ी बूटियां जू वंग

अभी आप सुन रहे थे किन्नौरी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत। कार्यक्रम का पहला लोकगीत आपको सुनाते हैं दयानंद शर्मा की आवाज में।

0: इसी के साथ लोकगीत यहीं संपन्न होते हैं। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध रहेंगे।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। प्रचार अभियान थमने के बाद अब उम्मीदवार केवल घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान ही चला सकेंगे। पहले चरण के मतदान के लिए विभिन्न जिलों में पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद इन चुनावों को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी में करीब 35,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 28 मई जबकि तीसरे चरण के लिए 30 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश भर में मतदान प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों से बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया है। इस बीच पहले चरण के मतदान के लिए चंबा जिले की 118, हमीरपुर जिले में 83, कुल्लू जिले में 84 जबकि लाहौल स्पीति जिले में 12 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पहले चरण में बिलासपुर जिले की 62 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। लाहौल स्पीति ज़िले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा के 71 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार इस्तीफे का मुख्य कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी सहित जिला भाजपा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ज़िला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है।

0: इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, जबकि अन्य दलों से आए लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद लाहौल स्पीति की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि इसका असर पंचायत चुनावों के साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले पर पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर को एक बार फिर प्रतिष्ठित संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान उनकी अध्यक्षता वाली कोयला, स्टील व खान संसदीय स्थायी समिति के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। अनुराग ठाकुर को वर्ष 2019 में भी लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान के तहत आज बिलासपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 41 बेटियों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि अभियान के अगले चरण के तहत 31 मई को भी बिलासपुर जिले के 30 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में शिविर लगाए जाएंगे, ताकि छूटी हुई पात्र बालिकाओं को टीकाकरण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ये टीकाकरण बेटियों को भविष्य में सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा नाहन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज विवेक कालिया ने बताया कि मानवता के कल्याण और जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से मिशन द्वारा समय समय पर इस तरह के रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं।
2: मिशन का संदेश है कि रक्त नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहे, ये इंसान को एक जीवन दान दे, इंसान को एक सुरक्षा प्रदान करे। इसी मानवता के भाव को लेकर ये मिशन के अनुयायी यहाँ रक्तदान शिविर कर रहे हैं और वर्षों बरस से ये रक्तदान शिविर करते आ रहे हैं। अभी तक कुल 7500 ब्लड डोनेशन के कैंप पूरे भारत वर्ष में लग चुके हैं और तकरीबन 15 लाख यूनिट से ऊपर का रक्तदान मिशन द्वारा किया जा चुका है, जो एक मानवता के लिए मिशन की तरफ से सराहनीय योगदान है।
1: भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षाएं 18 जून से 27 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन शिमला स्थित राजकीय महाविद्यालय संजौली में किया जाएगा। परीक्षा की संशोधित समय सारणी डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: क्या हुआ अबू?
3: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: कोई डर खौफ ना करें अबू, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम से आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहे। उन्हें कोई पैसे ना भेजे, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करे। अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं बिलासपुरी कार्यक्रम।

आज तुहें सुनने प्यारे प्यारे लोक गीत, खास खास खबरां भी मैं तुहां सुनानियां, कने लानियां छोटी छोटी प्यारी प्यारी गल्लां बातां भी। तो प्रोग्राम मारा नुआड़ जो आ सी लाना है इत प्यारे जे लोक गीतां कने।

लोकगीत सुनिया तुहें बसंत लाल ठाकुर होरी आवाज़ अच। खास खास खबरां, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता होरी ईंधन बचाने कने नशा मुक्त समाज बनाने खातर कोशित करने बारे गलावरा। शिमले च कल संझा एक जलसे च दिने गलाया पई देश विकसित भारत 2047 रे लक्ष्य पासे आगे बधिया करदा। इत यात्रा च मीडिया उद्योग स्कूल कॉलेज कने बाकी समाजिक संस्थाना जो है तिनारी गबरुआ री भी बड़ी जरूरी भूमिका ई। गवर्नर री गलाया पे छोटी छोटी कोशिशा करने ते माणू ऊर्जा बचाई सकदा। भारतीय प्रशासनिक सेवा हिमाचल प्रशासनिक सेवा तहसीलदार कने नायब तहसीलदार वगैरह रे पेपर 18 जून ते 27 जून तक होने। ए मतियान जो आ से संजौली कॉलेज।

लोकगीत सुना तुहें, आवाज़ थी हीरा लाल कौशलोरी। छोटी जी जी कोर गल बात लानी तुहाने, भई सफाई रा महत्व क्या। सफाई रा अर्थ आ अपने शरीर कने अड़ोस पड़ोस रे वातावरण जो गंदगी कने कीटाणुआ ते मुक्त रखना। ए सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि शरीर कने जीवा जो सांत भी रखदी। नियमित रूप से सफाई करते रहने ते खराब बैक्टीरिया वायरस कने कीटाणु खत्म हो जाते, जिससे डायरिया मलेरिया कने डेंगू सही कई बीमारियां जो या से खत्म हो जांदियां। साफ वातावरण च रहने ते रोगों ने लड़ने वाली शक्ति भी बनूरी रहती। सफाई रखना मारी जिंदगी का एक बड़ा भारी खास हिस्सा। इत्ते ना सिर्फ मारे अड पड़ोस सारी सुंदरता ही रहती, बल्कि जो आ से सफाई रहने ते परमेसर जो आ से भी उत्थी साक्षात हो जांदा। सफाई रखना एक आदत ही नहीं बल्कि एक संस्कार आ। ये मारी जिंदगी जो बधिया करदा। मारे स्याणे कलांदे थे भई स्वच्छता ही सेवाई। इत ते अहीं तंदुरुस्त भी रहिंदे कने मारा दिमाग जो आ से भी शांत रहिंदा। बखेरा पौरा हो बड़ भारी उरे पर गंद पौरा हो या आरे आस पड़ोसा च गंदगी हो तो इसते बासो बास हो ही रहिंदी कने मन अशांत रहा दिमाग भी खराब होने लगे आंदा। इस खातर साफ सफाई की आदत जो ही से होनी बड़ भारी जरूरी। पर ऐसा भी ना हो भाई तुहें सफाई अपने घर अंदर तक करती पर से देखिया तुहें भाई जो कोई देखिया रहा था सूड़ा जहा से पड़ोसियों के सामने सट्टता या एड़ी जगह सट्टता भी जिथे कोई नहीं जानता ही आ। कई लोग ऐसे भी देखे मैं भाई से चुपचाप जो आ से जंगला गे जे जाए और डाले रे मूड़ा गए कई किस्मारा कूड़ा जो आ से सटी देंदे। तो ऐसा जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एड़ी आदत। तो अहां जो आ से साफ सफाई रखना जरूर चाहिंदा। गंदगी सिर्फ माणुआ खातर ही नहीं बल्कि पर्यावरण खातर भी खतरनाक ही। प्लास्टिक कचरा जो आ से नदियां जंगलां कने जमीना जो प्रदूषित कर देंदा। इत खातर प्लास्टिक रा कटते कट इस्तेमाल करना चाहिंदा। हर घर आजकल कूड़ा चकने वाले आए, अहाँ सबनी रा फर्ज बनदा भी अहाँ जो गिला कूड़ा लग रखना चाहिंदा, सुखा कूड़ा लग रखना चाहिंदा। कने कई बार ऐसा हुआ भी प्लास्टिक वाली बोतलियां कुछ और समान आ तिसो बिल्कुल अलग रखना चाहिंदा कने अलग तिना देना चाहिंदा। कई बार अहे कप टुट रहा हुआ ग्लास टुट रहा हुआ कंच जो आ से भी तिस ची पाए तरह हुआ या और कई चुभनेरी चीज़ा जो हुई से भी अहें अपनी डस्टबिन च पाई तरी हुई कने तिया इसे अहें कूड़े वाले के पकड़ाए देंदे तो तिसते जो आज तीनों चोट लग जाएं। इस खातर अगर ऐसा कुछ भी तुहें पाना होगा तो हाँ जो चाहिंदा भी से जो आ से दसी कने तिनारे हत्था च देना चाहिंदा पर बढ़िया पैक करी कने ताकि किसी जो भी कोई नुकसान नहीं हो सको। सबनी जो खूब डाले बूटे लाने चाहिंदे, ये देखने तो खरे लगते ही लगते पर ये आहरे पर्यावरण जो भी साफ सुथरा रख दे अपने।

लोकगीत सुनया तुहें सुषमा कौसल होरी आवाज़ तो जी जिंदड़ी जो ये से चार दिन रही आई कने इसो बढ़िया अगर हैं कटना तहां जो स्वास्थ्य रा संभाल रखनी चाहिंदी तहां जो खरा बढ़िया पौष्टिक खाना खाना चाहिंदा तो जी टाइम भी हो चलने रा दो इजाजत नमस्कार।

जूली नमस्ते थे आकाशवाणी शिमला हिंच थन गी करजपई प्रोग्राम दो गीस तंजीनामो नांची इन हिंची पर छाई दो तिम्रे नियंपो स्वागत लिखत थन थे प्रोग्राम हिंजी ललत नियंपो लिखते ललई मिन ग्रही हुन ललत हिंची पर मेरू चांदनी

थनथे रेडियो कार्यक्रम गी थुगजे इरांगजे तिकी सकेत की बोंठे फेंके थजु सकेत इरी हिमाचल प्रदेश की इरी राई गरजांग नीजी दांगपुशे गी होश में मिंचन मंदिर त्रिलोकनाथ मंदिर बोंठे फेंके।

0: and IIT Kanpur to assist the Central Board of Secondary Education, that is CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. This decision has been taken in view of the developments and concerns raised by the students and parents regarding the CBSE Post-Result Services portal. A four-member medical team from the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Delhi, today conducted second autopsy of the former model-turned-actor Tushar Sharma in Bhopal. The post-mortem lasted nearly 3 hours under tight security arrangements. After completion of legal formalities, the body was handed over to the family and the last rites were performed at the Bhadbada Crematorium in Bhopal. At the Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, clinching 2 silver and 1 bronze medal in the women's freestyle events in Vietnam's Da Nang today. In the 50-kilogram category, Sweetie won silver after going down against local favourite Ngo Linh Do, 7-5 defeat in the gold medal match. And in IPL cricket, Rajasthan Royals have set a target of 206 runs against hosts Mumbai Indians at Wankhede Stadium. In reply, Mumbai Indians were 137 for 5 in 13.3 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला. 7:10 हुए हैं. लीजिए सुनिए किसानों और बागवानों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत.
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा
3: नमस्कार.
2: किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जगत कार्यक्रम में. और कार्यक्रम को लेकर के हाजिर है हम. मैं हूं जय.
3: और मैं हूं अरविंद.
2: तो अरविंद जी, और सुनाइए क्या हाल चाल है आपके.
3: जय सिंह जी, मेरे हाल चाल बिल्कुल ठीक है और आशा करते हैं कि हमारे किसान बागवान भाई बहन भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे.
2: जी, इन दिनों बहुत से काम जो है किसान और बागवान भाई बहनों को रहते हैं. अरविंद जी, यदि हम बात करें बागवानी की
3: जी,
2: तो बागवानी में इन दिनों पलम है, खुमानी है, चेरी है, बाजार में आ रहे हैं और बाजार में इन दिनों दाम भी बेहतर मिल रहे हैं, लेकिन गर्मियों का मौसम भी है. ऐसे में बागवान भाई बहनों से हम यही चाहेंगे कि समय से आप जो अपनी गुठलीदार फसलें हैं उनकी तुड़वाई कर लें और समय से उन्हें बाजार पहुंचाएं ताकि आपकी फसल भी सही रहे और उसके दाम भी आपको सही मिले.
3: जी बिल्कुल.
2: और साथ ही साथ यदि कृषि की बात की जाए तो कृषि में इन दिनों आने वाली जो फसलें हैं उनकी बुवाई चल रही है. मक्की की बुवाई का समय है वो भी हो चला है.
3: तो जय सिंह जी, ये तो आपने अच्छी जानकारी दी समसामयिक कार्यों के बारे में. तो करते हैं कार्यक्रम का आगाज और शुरुआत करते हैं आज के आकर्षणों से. किसान भाई बहनों, आज हमारा काम की बातों के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा आलू के रोग व उपचार. मनोरंजन होगा लोकगीतों के माध्यम से और सुनवाई जाएगी जानकारी पूर्ण बातचीत. कार्यक्रम के अंत में आपको कल के मुख्य आकर्षणों से भी अवगत करवाया जाएगा.
2: किसान साथियों, कार्यक्रम की बातों के तहत हमारा आज का विषय है आलू के रोग व उपचार. किसान साथियों, बहुत से हमारे किसान साथी अपने खेतों में आलू की फसल लगाते हैं और उससे अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं
3: जी.
2: तो आलू की फसल में कई बार बहुत सी बीमारियां लग जाती है जिनका रोकथाम जो है समय पर करना बहुत ही जरूरी होता है. तो अरविंद जी, बात करते हैं कि आलू में कौन कौन से जो रोग होते हैं और कैसे हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं.
3: किसान भाई बहनों, वैसे तो आलू की कई बीमारियां विभिन्न फफूंदों द्वारा होती है, मगर हिमाचल प्रदेश में पिछेता झुलसा, अगेती झुलसा और फोमा पत्ती धब्बा प्रमुख हैं. आलू की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान लेट ब्लाइट या पिछेता झुलसा के कारण होता है.
2: किसान साथियों, पिछेता झुलसा रोग के प्रमुख लक्षणों की यदि बात की जाए तो यह बीमारी पौधों के पत्तियों, डंठलों और कंदों पर भी लगती है. सबसे पहले पत्तियों पर छोटे हल्के भूरे अनियमित धब्बे दिखाई देते हैं जो शीघ्र ही बढ़कर बड़े गीले दिखने वाले धब्बे बन जाते हैं. बाद में पत्तियों की निचली सतह पर धब्बों के चारों ओर अंगूठी नुमा सफेद फफूंद दिखाई देती है. मौसम में नमी कम होने पर पत्तियों का गीला भाग सूख कर भूरे रंग का हो जाता है. डंठलों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में लंबाई में बढ़कर डंठल के चारों ओर फैल जाते हैं. कंदों पर छिछला लाल भूरे रंग का शुष्क

0: गलन पाया जाता है, प्रभावित हिस्सा काफ़ी सख्त हो जाता है और कंद का गूदा बदरंग हो जाता है और उसमें से जली हुई चीनी जैसी महक आती है। गूदे के किनारों पर जंगनुमा भूरापन आ जाता है।
1: तो किसान भाई बहनों, अब बात आती है कि इस बीमारी के लिए अनुकूल मौसम कौन सा है। इसके बारे में इस बीमारी का आगमन और फैलाव पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करता है। जब भी 2-3 दिन का लगातार तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 85% से अधिक हो, बादल छाए हों और हल्की बूंदाबांदी होती रहे या कोहरा छाया हो, तो समझना चाहिए कि ये बीमारी जल्दी ही आने वाली है।
0: किसान साथियों, अब पिछहत्ता झुलसा रोग के रोकथाम की बात करते हैं।
1: जी,
0: इस बीमारी की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण और कारगर तरीका है कि पिछहत्ता झुलसा प्रतिरोधक आलू की किस्में लगानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लिए संस्थान द्वारा विकसित कुफरी ज्योति, कुफरी गिरिराज, कुफरी गिरधारी और कुफरी हिमालिनी प्रजातियों की सिफारिश की गई है। किसान साथियों, रासायनिक विधि से उपचार की यदि बात करें तो फसल पर पौधों की झाड़ बनने से पूर्व या जैसे ही मौसम पिछहत्ता झुलसा के आगमन हेतु अनुकूल दिखे, मैनकोजेब या क्लोरोथैलोनिल या प्रोपिनेब 2 ग्राम प्रति लीटर का सुरक्षात्मक छिड़काव करें। साथ ही साथ बीमारी दिखने की अवस्था में फसल पर साइमोक्जेनिल और मैनकोजेब या डाइमेथोमोर्फ और मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें और बरसात के दिनों में फफूंदनाशी के साथ स्टिकर का प्रयोग करें ताकि दवाई घुलने ना पाए। मौसम के अनुसार किसान साथियों, 8 से 10 दिनों के अंतराल पर आप 4 से 5 छिड़काव तक करने की जो आवश्यकता है वो पड़ सकती है।
1: किसान भाई बहनों, हमेशा रोग रहित और प्रमाणित बीज का प्रयोग करें और खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध रखें। फसल के अवशेषों और पिछले वर्ष के आलू के पौधों, जिन्हें हम वॉलेंटियर प्लांट्स भी कहते हैं, उन्हें नष्ट कर दें। मेढ़ों की ऊंचाई ऐसी रखें कि कंद मिट्टी से अच्छी तरह ढके रहें ताकि नए कंदों तक फफूंद आसानी से ना पहुंच सके। बीमारी के प्रकोप से जब लगभग 3/4 तक पत्तियां नष्ट हो जाएं, तो उस स्थिति में डंठलों को काटकर खेत से बाहर गहरे गड्ढे में दबा देना चाहिए। डंठलों को काटने के 15 से 20 दिन बाद जब कंदों का छिलका सख्त हो जाए, तब फसल की खुदाई करनी चाहिए। रोग से ग्रसित कंधों को छांटकर अलग कर देना चाहिए। अगर कंधों को बीज के लिए आगे प्रयोग करना हो तो उन्हें बोरिक एसिड के 30 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में उपचारित करके अच्छी तरह सुखाकर भंडारित करना चाहिए।
0: किसान साथियों, आलू की फसल की कुछ बीमारियां ऐसी है जिनके जीवाणु जमीन में रहते हैं। यह जीवाणु कंद को नुकसान पहुंचाते हैं और रोग ग्रसित कंद इन बीमारियों के वाहक बन जाते हैं, इसलिए इन्हें मृदा और कंद जनित रोग भी कहते हैं। ये रोग हैं काली रूसी, चूर्णी खुरंड, गुलाबी गलन, शुष्क गलन, मृदु गलन, भूरा गलन और शकाणु मुरझान।
1: किसान भाई बहनों, इन बीमारियों के जीवाणु जमीन में काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं और जब कंदों पर ये बीमारियां लग जाती है, तब बीज आलू द्वारा ये बीमारियां दूसरे प्रदेश या रोग मुक्त खेतों में चली जाती है। इन रोगों से ग्रस्त आलू का मूल्य बाजार में कम मिलता है। हिमाचल प्रदेश बीज आलू पैदा करने वाला एक मुख्य राज्य है। अगर इन बीमारियों का बीज आलू पर प्रभाव ज्यादा हो तो बीज प्रमाणित नहीं किए जा सकते। इन रोगों से प्रभावित कंद भंडारण में सड़ जाते हैं।
0: जीवाणु मुरझान की यदि बात की जाए तो इस रोग में पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं। ऐसा लगता है कि पौधों को पानी की आवश्यकता है, मगर पानी मिलने पर भी पौधों का मुरझाना जारी रहता है और पौधे मर भी जाते हैं।
1: किसान भाई बहनों, बात करते हैं लक्षणों की। इसका बहुत ही आसान तरीका है। मुरझाए पौधे के तने का जमीन के पास से लगभग 1/2 फुट लंबा हिस्सा काट लें। एक साफ कांच के गिलास में पानी लेकर तने का कटा हिस्सा डुबो दें। अगर पौधा शाकाणु रोग से ग्रसित है तो कटे वाले हिस्से से 2 से 3 मिनट में धागे की तरह सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलेगा और अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लें कि मुरझान फफूंद के कारण हो सकता है।
0: तो किसान साथियों, कार्यक्रम में हमने बात की आलू के रोग व उपचार के बारे में और उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। तो

तो अरविंद जी, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और किसान और बागवान भाई बहनों का मनोरंजन कराते हैं एक प्यारा से लोकगीत के साथ। तो आइए किसान साथियों, सुनते हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान बागवान भाई बहन अभी सुन रहे थे लोकगीत। अब हम आपको जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनवाने जा रहे हैं। विषय रहेगा शुद्ध व स्वच्छ दूध उत्पादन। जानकारी पूर्ण बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर ऐश्वर्या बाल्टू और जानकारी हासिल करेंगे दिनेश। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये बातचीत।
1: आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर ऐश्वर्या बाल्टू। डॉक्टर ऐश्वर्या जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: जैसा कि आज का हमारा विषय है शुद्ध एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, तो डॉक्टर ऐश्वर्या बाल्टू जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे किसान और बागवान भाई बहन अपने खेतीबाड़ी के साथ साथ दुग्ध उत्पादन भी करते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वच्छ दूध से क्या अभिप्राय है।
2: स्वच्छ या शुद्ध दूध हम उस दूध को कहेंगे जो दूध एक स्वस्थ पशु से स्वस्थ और स्वच्छ पशुपालक द्वारा लिया जाए। जो पशुपालक है वो स्वच्छ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, आसपास का वातावरण हमारा स्वच्छ होना चाहिए और दूध में किसी भी तरह का बाह्य पदार्थ नहीं होना चाहिए, जैसे कोई भी तिनका हो गया, कोई मकड़ी का जाला, कोई कीटाणु मच्छर या फिर कोई भी हानिकारक जीवाणु विषाणु उपस्थित नहीं होना चाहिए। इस तरह के दूध को हम एक स्वच्छ दूध मानते हैं। वैसे ही वातावरण है, आसपास का वातावरण, गौशाला या पशुशाला जहां हम पशु को रखेंगे वो भी साफ होना चाहिए, बर्तन हमारा साफ होना चाहिए और जो पशु है जिससे हम दूध ले रहे हैं वो भी स्वस्थ होना चाहिए। बीमार पशु से आप दूध लेंगे तो वो दूध हमारा स्वस्थ दूध नहीं कहलाता। अगर पशु स्वस्थ है तब उससे जो दूध हम लेते हैं उसे ही हम स्वस्थ दूध कहते हैं।
1: जी बिल्कुल, यानी इन सावधानियों को हमारे किसान और बागवान भाई बहनों ने ध्यान में रखना है। साथ ही हमारे किसान और बागवान भाई बहन जब दुग्ध गाय से निकालते हैं तो उस समय उन्हें किस प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल करना होता है?
2: जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि बर्तन का हमें लगता है कि बर्तन इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन बर्तन का एक बहुत ही मेजर या महत्वपूर्ण रोल है स्वच्छ दूध में। क्योंकि क्या होता है, जिस हम अगर पशु स्वस्थ है, पशुपालक ठीक है, लेकिन अगर आपका बर्तन खराब है तो आपका जो सारी मेहनत है वो सारी खराब हो जाती है। तो बर्तन के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है। हमने गाँव में बहुत बार देखा है कि प्लास्टिक की बाल्टियों का इस्तेमाल किया जाता है, बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमने दूध निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि प्लास्टिक में क्या होता है, रेजिड्यू यानी दूध के कण रह जाते हैं। आप चाहे जितनी भी सफाई करेंगे उस बर्तन की, वो बर्तन पूर्ण तरह से साफ कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यही एडवाइस करते हैं, यही हम लोगों को कहते हैं कि आपने जो बर्तन लेना है वो मुख्य तौर पर स्टेनलेस स्टील का ले या एल्यूमिनियम का ले, क्योंकि वो बर्तन जो है वो अच्छे से साफ हो सकता है, अच्छे से उसको सूख सकता है, उसमें कोई भी कण पिछले दूध का नहीं रहता, वो बिल्कुल साफ रहेगा। और हम आयरन का देखा है कई जगह लोहे का भी बर्तन इस्तेमाल करते हैं लोग, तो वो भी नहीं करना है। उसमें क्या खतरा रहता है कि जंग लगने का खतरा रहता है, और यदि जंग लग जाए बर्तन में तो दूध उससे खराब हो जाएगा। और बर्तन का एक और चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगी कि बर्तन जो भी आप इस्तेमाल करें वो ढक्कन वाला इस्तेमाल करें, खुला बर्तन इस्तेमाल ना करें। खुला बर्तन रहेगा तो उसमें अशुद्धियां गिरने का खतरा रहेगा, तो हमेशा जो भी बर्तन इस्तेमाल करें वो ढक्कन वाला होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पशु और पशुशाला किस प्रकार की होनी चाहिए?
2: जी, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो पशु है वो स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन स्वस्थ होने के साथ साथ पशु का स्वच्छ होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है पशु की साफ सफाई पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। पशु में, जैसे आपने देखा होगा, पशु में बाल होते हैं, झड़ रहे होते हैं बाल, धूल लगी होती है, गोबर लगा होता है, तो उसकी अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो दूते समय क्या होगा कि वो जो गंदगी है वो दूध में गिर सकती है। पशु की पूंछ हमने देखी है तो ज़्यादातर गोबर से लिपटी होती है, तो लोग उसकी सफाई नहीं करते। अगर दूते हुए पशु पूंछ हिला रहा है और वो पूंछ दूध में लग गई तो वो दूध उससे खराब हो जाएगा। तो पशु की नियमित तौर पे हमें ग्रूमिंग, ब्रशिंग और सफाई जरूर करनी है। फिर आई पशुशाला की बात, क्योंकि हमने देखा है ज्यादातर जो दूध है वो पशुशाला में ही निकाला जाता है, तो पशुशाला भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे जो छत है पशुशाला की, उसकी बात करते हैं, तो छत रिसती हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे बरसात है तो बरसात में पानी गिरेगा तो वो दूध में गिर जाएगा। अगर छत है, छत से कोई मकड़ी का जाल लटका हुआ है, कोई धूल आ रही है, तो वो भी दूध में गिरने का खतरा रह सकता है और दूध खराब हो सकता है। फिर फर्श है, फर्श अगर आपका साफ नहीं है, मल मूत्र वहीं पड़ा है, तो उसमें क्या होगा, मक्खी मच्छर बैठ सकते हैं जिससे बीमारी फैल सकती है, दूध भी खराब हो सकता है। और वहां पे गंदगी होगी तो पशु को फिसलने का भी

0: खतरा रहता है, पशु भी उससे गिर सकता है। तो पशुशाला में एक अच्छी निकासी होनी चाहिए जिससे जो मल मूत्र है वो नियमित तौर पे वहाँ से साफ किया जा सके। और पशुशाला जो है वो आप पशुशाला में आपके नियमित तौर पे जो सूर्य की किरणें हैं, सनलाइट है, वो पड़नी चाहिए। सनलाइट पड़ेगी तो पशुशाला दिन को सूखती रहेगी और डिसइन्फेक्ट होती रहेगी। तो ये पशु और पशुशाला का जो हमारा स्वच्छ होना, वो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अति आवश्यक है।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना बड़ा ही ज़रूरी है कि पशुओं की नियमित रूप से सफाई करें और साथ ही पशुशाला को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। डॉक्टर साहब, अगर दूध खराब है तो इसका किसान किस तरह से पता लगा सकते हैं?
0: किसान अपनी इंद्रियों द्वारा दूध के ख़राब होने का पता लगा सकते हैं। अब हम अपने घरों में या फिर किसान अपने घरों में कोई आधुनिक तौर का टेस्ट तो नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते, तो वो अपनी इंद्रियों से पता लगा सकते हैं कि दूध स्वच्छ है या नहीं है। जैसे देख के पता लगा सकते हैं, सूंघ के पता लगा सकते हैं, या उसके स्वाद से पता लगा सकते हैं। दूध का अगर रंग पीला है, उसमें हल्की लालिमा या लाल रंग है, मतलब खून के छींटे लग रहे हैं, या थक्के बने हुए हैं, सफ़ेद मोटे मोटे दूध के थक्के हैं, तो आपको लग जाएगा कि ये दूध जो है ये आपका स्वच्छ या स्वस्थ नहीं है, इसको इस्तेमाल नहीं करें। दूध की स्मेल से खट्टापन आपको लगेगा दूध में, आपको पता चल जाएगी, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि दूध आपका स्वच्छ नहीं है। फिर आता है उसका टेस्ट, स्वाद। तो दूध का जो स्वाद है वो भी पीते हुए आपको लग जाएगा कि इसका स्वाद खराब आ रहा है, तो उस दूध को आप ग्रहण ना करें, ना किसी और को दें, क्योंकि वो दूध खराब है। फिर हम ये कर सकते हैं, जैसे आप दूध लेते हैं उसके बाद उसको उबालने रख देते हैं हम, तो आपने ध्यान दिया होगा कई बार क्या होता है कि दूध उबालते हैं और एकदम से दूध फट जाता है। तो अगर ऐसा भी आपके दूध के साथ हो रहा है तो वो दूध भी पीने योग्य नहीं है, वो स्वच्छ या स्वस्थ दूध नहीं है, उस दूध को इस्तेमाल ना करें।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और डॉक्टर ऐश्वर्या वाल्टू जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खराब दूध से कौन कौन सी बीमारियां मनुष्यों में लग सकती है?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, मनुष्यों से पशुओं में बीमारियां और पशुओं से मनुष्यों में बीमारियां। इन बीमारियों को हम जूनोटिक यानी प्राणी रुझा रोग कहते हैं। तो अब ये बीमारियां, अब जैसे टाइम बीत रहा है तो इस तरह से ये बीमारियों का खतरा और बढ़ रहा है, पशुओं की बीमारियाँ इंसानों में और बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, तो इस चीज़ पर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, और इस नज़रिए से ये टॉपिक और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्राणी रुझा रोग है या जूनोटिक डिजीज़ है, वो बहुत माध्यम से पशुओं से इंसानों में जा सकती हैं, जैसे हवा से जा सकती हैं, पानी से जा सकती हैं, उसमें से एक माध्यम है हमारा दूध। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पशुओं से दूध के द्वारा इंसानों में जाती हैं। उन बीमारियों में जैसे कि आपकी ब्रुसेलोसिस हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गई जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं, पैराट्यूबरक्लोसिस हो गई, क्यू फीवर हो गया, इस तरह की कई बीमारियां आती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर हमारा दूध साफ नहीं है, उसमें कोई बीमारी है पशु को, तो वो बीमारी सिर्फ पशु को ही नहीं, हमें भी और हमारे बच्चों को भी बीमार कर सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं आजकल, आपने सुना होगा कि पाश्चराइज करते हैं दूध। कैसा पीना चाहिए? पाश्चराइज दूध पीना चाहिए। आप अलग अलग लेबोरेटरीज़ में तो ये कर सकते हैं, फैक्ट्रीज़ में पाश्चराइजेशन कर सकते हैं, तो घरों में क्या करना है, पाश्चराइजेशन का जो अर्थ है वो है दूध को एक उपयुक्त तापमान पर गर्म करना और फिर उसको ठंडा करना। तो घरों में क्या कर सकते हैं हम, दूध को जब भी आपने इस्तेमाल करना है, आपने एक ये आदत बनानी है कि कच्चा दूध कभी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? ये लोगों में धारणा गलत है कि कच्चा दूध ज़्यादा पौष्टिक होता है, उबाल के दूध की पौष्टिकता खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। उबाल के दूध और आपका सुरक्षित हो जाएगा आपको पीने के लिए। तो आपने ये ध्यान रखना है, चाहे आप दूध की लस्सी बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, या दूध से कुछ भी और पदार्थ बना रहे हैं, तो आपने पहले दूध को अच्छे से 10-15 मिनट उबालना है, उसके बाद उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसके बाद आप उसको ग्रहण कीजिए, उससे कोई पदार्थ बनाइए, जैसे भी आपने उसको इस्तेमाल करना है वो आपके लिए सेफ है और सुरक्षित है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, इससे हम पशुओं को तो बीमारी है ये, उससे तो हम बच ही रहे हैं, लेकिन मनुष्यों में भी कुछ बीमारियाँ जो हो सकती हैं उससे भी बचा जा सकता है।
1: जी बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि पशुओं में एक थनैला रोग लग जाता है, तो इस रोग से हमारे किसान भाई पशुओं को किस तरह से बचा सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, दूध से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण और जो कॉमन हम देखते हैं पशुओं में रोग, वो थनैला ही है। तो थनैला रोग क्या होता है, जैसे नाम में ही कहा है, थनैला थन का रोग। इसमें क्या होता है जी, जो थनों में या आयन में जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें संक्रमण हो जाता है। इसके क्या लक्षण आते हैं, जो आपका थन होगा, आयन होगा, उसमें सूजन आ जाएगी, वो छूने पे दर्द करेगा पशु का, या लाल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, सब क्लिनिकल थनैला

0: होता है, यानी कि लक्षण आते नहीं है लेकिन पशु को थनैला होता है। उसमें क्या हो जाता है, एकदम से जो दूध का उत्पादन है वो कम हो जाएगा। कोई पशु जो है जो 8-10 लीटर दूध दे रहा है वो एकदम से 4 लीटर पे आ जाएगा। उसका जो थन है वो आपको लगेगा कि जितना दूध देता था उससे कम दूध दे रहा है। जो दूध है उसमें थक्के आने शुरू हो जाएंगे, और ज्यादा ही अगर थनैला बढ़ गया है तो खून भी आ सकता है और थन बंद भी हो सकता है। तो ये जो बीमारी है उससे बचने का सबसे जो जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है साफ सफाई, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये जो रोग है ये विषाणु जीवाणु सभी तरह जो है हमारे आसपास वो इसको फैलाते हैं, वो इसको संक्रमित करते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है। ज़्यादातर ये रोग हमने देखा है इसे फैलता है कि जैसे हम दूध दूहते हैं तो आपने क्या करना है, जब दूना है जो ग्वाला या पशुपालक जो दूध दूह रहा है उसको सबसे पहले अपने हाथ साफ रखने हैं, उसके बाद थनों को अच्छे से धोना है, उसके बाद वो क्या करेगा, दूध दूना शुरू कर देगा। क्या होता है जी, जब दूध दूहते हैं तो पहले जो थन है उसके आगे एक छिद्र होता है, स्फिंक्टर होता है, वो छिद्र बंद होता है नॉर्मली। लेकिन जब दूध दूहते हैं तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज होता है जिसकी वजह से वो छिद्र खुल जाता है और थन से दूध बाहर निकलता है। तो इस तरह से किसान है वो दूध दूहता है। लेकिन क्या होता है, जब दूध दूना वो बंद कर देता है, दूध निकाल देता है, उसके भी 10-15 मिनट तक वो जो छिद्र है वो हमारा खुला रहता है, तो ये लोगों को पता नहीं है। तो वो छिद्र अगर खुला रह गया, क्योंकि वो 10-15 मिनट बाद बंद होगा, तो और दूध दूहने के एकदम बाद अगर पशु नीचे बैठ गया, नीचे आप चाहे जितनी भी सफाई करें, फर्श तो गंदा रहता ही है पशुशाला का, तो नीचे के जितने भी विषाणु हैं जीवाणु हैं वो उस छिद्र द्वारा थनों में चले जाते हैं और थन की जो दुग्ध ग्रंथियां उसमें संक्रमण करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है थनैला रोग होने का। फिर क्या है कि हमारा जो मेथड है, जो हमारी दूध दूहने की प्रक्रिया है, वो भी कहीं जगह हमने देखा है खराब है, गलत है। जो हमें दूध है, दूध हमें पूर्ण हस्त विधि से धोना चाहिए, मतलब दोनों हाथों का इस्तेमाल, पूरी हथेलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। कई जगह क्या करते हैं, सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह अंगूठा अंदर की तरफ मोड़ के दूध दूहते हैं। तो इस तरह इसकी प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, पूरी तरह से अपनी हथेलियों से थनों को पकड़कर दूध दूहना चाहिए। और हमेशा जब भी दूध दूहें तो कंप्लीट मिल्किंग करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा दूध थन में रह गया और बाकी आपने निकाल दिया। हमेशा जब भी दूध निकालें पूर्ण तरह से दूध निकालें। इन सावधानियों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने किसान जो हमारे भाई बहन हैं वो अपने घरों में ही अपनी मैनेजमेंट यानी रख रखाव द्वारा ही इस बीमारी से बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी आगे दूध के फैलने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, यानी डॉक्टर साहब आपने जो थनैला रोग के बारे में बताया तो हमारे किसान भाइयों के द्वारा जो है इन छोटी छोटी बातों का अगर वो खुद ध्यान रखेंगे तो पशुओं को वो थनैला रोग से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब अंत में आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी वैसे तो हमारा टॉपिक है उस बारे में तो हमने काफ़ी डिस्कस कर दिया है कि किस तरह से हमने साफ सफाई का ध्यान रखना है, दूध को किस तरह से सही तरीके से उत्पादन दूध का करना है और पशु को किस तरह से स्वस्थ रखना है। लेकिन एक और कुछ मैं जो अपनी तरफ से अपने किसान भाई बहनों को कहना चाहूँगी वो ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमने देखा है लोग आवारा पशुओं को सड़कों पे छोड़ देते हैं, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद घटना है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पशु आपका उत्पादन कर रहा है, दूध दे रहा है, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तब आप उसको पालते हैं। जैसे ही वो फ़ायदा देना बंद कर देता है या उसका उत्पादन कम हो जाता है, आप उसको सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। ये पशुओं की इतनी दयनीय स्थिति है, ये हमारे लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पशुओं के लिए भी है। अब इतनी सर्दियों में इतने रोड एक्सीडेंट हैं, ये सारे हमारे आवारा पशुओं की वजह से हो रहे हैं। तो मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगी सारे किसान भाई बहनों का कि अपने पशु को अपने घर के सदस्य की तरह रखें, उसे उतना ही प्यार से और अपनापन से पालें जितना आप आपस में रहते हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अंत में हमारे किसान भाइयों को इतना अच्छा संदेश दिया कि सभी किसान और बागवान भाई बहन जो है अपने पशुओं को आवारा ना छोड़े और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की ही तरह अपने पशुओं के साथ प्यार करें। तो डॉक्टर ऐश्वर्य बाल्टू जी, आज आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए और हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को शुद्ध और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इन सब जानकारी के लिए और स्टूडियो में उपस्थित होने के लिए आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान साथियों, कार्यक्रम में आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय था शुद्ध व स्वच्छ दूध उत्पादन। कार्यक्रम में अधिक जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ऐश्वर्या बाल्टू और उनसे बातचीत कर रहे थे दिनेश, और उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी से जरूर लाभान्वित हुए होंगे।

0: किसान बागवान भाई बहन अभी सुन रहे थे लोकगीत। तो जयसिंह जी, क्यों ना चलते चलते अपने किसान बागवान भाई बहनों को कल के मुख्य आकर्षणों से भी अवगत करवा दिया जाए।
1: किसान साथियों, काम की बातों के तहत कल आपसे रूबरू होंगे धान की काश्त इस विषय को लेकर के, और साथ ही साथ रोजाना की तरह लोकगीतों से करवाएंगे आपका मनोरंजन और सुनवाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय रहेगा हिमाचल प्रदेश में ऑर्किड की खेती की संभावनाएं और तरीके।
0: तो किसान भाई बहनों, इसी के साथ हमारा आज का

0: कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सभी सुनने वालों से अनुमति चाहेंगे।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध रहेंगे।
4: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
5: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
4: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
5: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए प्रचार थमा, 26 मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। भाजपा का आरोप, नगर निकाय व पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही कांग्रेस सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। और भाजपा ने 28 पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्वों से किया मुक्त, जिला परिषद चुनावों में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हुई कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। प्रचार थमने के बाद अब उम्मीदवार केवल घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। पहले चरण में प्रदेश में 1293 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 28 मई जबकि तीसरे चरण में 30 मई को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश भर में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8,198 मतदान दल गठित किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं और आज ही वे अपने केंद्रों में पहुंच जाएंगे। आयोग ने सभी मतदाताओं से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहने की अपील की है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल होगा। प्रदेश भर में मतदान प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच पहले चरण के मतदान के लिए चंबा जिले की 118, ऊना जिले की 86, हमीरपुर जिले में 83, कुल्लू जिले में 84 जबकि लाहौल स्पीति जिले में 12 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पहले चरण में बिलासपुर जिले की 62 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। चंबा जिले के जनजातीय पांगी उपमंडल की 19 पंचायतों में 26 और 28 मई को मतदान होना है। इन चुनावों के लिए पांगी के आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने पोलिंग टीमों को चुनाव सामग्री के साथ आज संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया। पांगी उपमंडल में कुल 52 पोलिंग टीमें विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए भेजी गई हैं जबकि 10 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। आवासीय आयुक्त ने मतदान दलों को आपसी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। लाहौल स्पीति जिले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा के 71 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार इस्तीफे का मुख्य कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी सहित जिला भाजपा

0: अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले लाहौल स्पीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, जबकि अन्य दलों से आए लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस सामूहिक इस्तीफे के बाद लाहौल स्पीति की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि इसका असर पंचायत चुनावों के साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले पर पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार नगर पंचायत व पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा है कि प्रशासनिक व राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से जनादेश को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की भावनाओं के विरुद्ध है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा कल 25 मई को शिमला स्थित लोकभवन में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगी। पार्टी नेताओं के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान हुई मंत्रिमंडल बैठक और चुनाव प्रभावित करने वाले फैसलों पर भी सवाल उठाए जाएंगे। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से राज्य में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। वे आज हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जिला परिषद वार्डों से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान मिल रहे जनसमर्थन से ये स्पष्ट है कि पूरे हमीरपुर जिले में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है। सिकंदर कुमार ने कहा कि कांग्रेस की नाकामी और जन विरोधी रवैये के खिलाफ लोगों में भारी रोष है, जिसका नतीजा चुनावों में साफ दिखेगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। शिमला में एक निजी रेडियो चैनल द्वारा आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर है और इस यात्रा में मीडिया, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों सहित युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। राज्यपाल ने युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन पर चिंता जताते हुए इसे समाज और नैतिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया नशा मुक्ति अभियान में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। प्रदेश भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 28 पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त कर दिया है। ये कार्रवाई जिला परिषद चुनावों में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर की गई है। भाजपा द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखने और कार्यकर्ताओं में स्पष्ट संकेत देने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से संगठन की विचारधारा, अनुशासन व अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में कार्य करने का आह्वान किया है। स्वास्थ्य विभाग ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान के तहत आज बिलासपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 41 बेटियों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि अभियान के अगले चरण के तहत 31 मई को भी बिलासपुर जिले के 30 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में शिविर लगाए जाएंगे, ताकि छूटी हुई पात्र बालिकाओं को टीकाकरण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ये टीकाकरण बेटियों को भविष्य में सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। हमीरपुर जिले में भी 20 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा नाहन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज विवेक कालिया ने बताया कि मानवता के कल्याण और ज़रूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से मिशन द्वारा समय समय पर इस तरह के रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं।
2: मिशन का संदेश है कि रक्त नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहे, ये इंसान को एक जीवन दान दे, इंसान को एक सुरक्षा प्रदान करे, इसी मानवता के भाव को लेकर ये मिशन के

0: अनुयायी यहाँ रक्तदान शिविर कर रहे हैं और वर्षों बरस से ये रक्तदान शिविर करते आ रहे हैं। अभी तक कुल 7500 ब्लड डोनेशन के कैंप पूरे भारत वर्ष में लग चुके हैं और तकरीबन 15 लाख यूनिट से ऊपर का रक्तदान मिशन द्वारा किया जा चुका है, जो एक मानवता के लिए मिशन की तरफ से सराहनीय योगदान है।
1: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर को एक बार फिर प्रतिष्ठित संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान उनकी अध्यक्षता वाली कोयला, स्टील व खान संसदीय स्थायी समिति के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। अनुराग ठाकुर को वर्ष 2019 में भी लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षाएं 18 जून से 27 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन शिमला स्थित राजकीय महाविद्यालय संजौली में किया जाएगा। परीक्षा की संशोधित समय सारिणी डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनावों के लिए प्रचार थमा, 26 मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। भाजपा का आरोप, नगर निकाय व पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने का प्रयास कर रही कांग्रेस सरकार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। और भाजपा ने 28 पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्वों से किया मुक्त, जिला परिषद चुनावों में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हुई कार्रवाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: आठ बज चुके हैं और इस सुरीली शाम में रीमा ठाकुर का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत। वो गीत जो दिल के किसी कोने में आज भी बसे रहते हैं, वो धुनें जो हमारे बीते दिनों की याद हमें हर पल दिलाती रहती है, कुछ ऐसे गीत जो सच में समय को थाम लेने की ताकत भी रखते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस सुनहरे दौर में जब संगीत दिल से बनाया जाता था और दिल तक पहुंचता था। माया फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ों में। संगीत से सजाया है सलिल चौधरी ने और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दिल एक मंदिर। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कहते हैं कि संगीत समय को रोक सकता है, और आज की इस शाम में हम समय को थोड़ा पीछे लेकर जा रहे हैं। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं यास्मिन फिल्म का गीत, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सी रामचंद्र की संगीत रचना और शब्द रचना है जावनीसा अख्तर की।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सुरों से सजी इस शाम में आप एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। रोशन के संगीत से सजा और साहिर के शब्द रचना चित्रलेखा फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक और नगमा उस दौर का, जब हर धुन में एक जादू होता था। फिल्म का नाम है प्यार का सागर, आवाज़ मुकेश की, रवि की संगीत रचना और बोल लिखे हैं प्रेम धवन ने।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला के साथ। और ये वही गीत हैं जिन्हें आज भी सुनते हैं तो दिल उन्हीं पुरानी यादों में कहीं खो जाता है। एक तो पुराने गीतों की खासियत ही यही रहती थी कि सरल शब्द, गहरी भावनाएं और सच्चा संगीत। तो कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक और नगमा, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, जिंदगी और ख्वाब फिल्म से। संगीत रचना दत्ताराम की और बोल लिखे हैं प्रदीप ने।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। उम्मीद है आज का ये सफ़र आपको आपके बीते सुनहरे पलों में ज़रूर वापस लेकर गया होगा। कहीं मत जाइए, बने रहिए FM शिमला के साथ। आज के इस शाम में बहुत कुछ लेकर आए हैं आपके लिए, बने रहिए और सुनते रहिए।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
0: FM शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। हम सफर होता कोई तो बांट लेते दूरियां, हम सफर होता कोई तो बांट लेते दूरियां, राह चलते लोग क्या समझे मेरी मजबूरियां। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, इस फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाजों में, प्रीतम की संगीत रचना और इरशाद कामिल की शब्द रचना।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं एफएम शिमला के साथ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, के उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

0: फिल्म संगीत अभी आपने सुना 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 के लिए। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
3: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
3: Importer of energy and much of it comes from that region.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
4: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल

0: में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया

है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिविजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं।

0: and 3 bronze medals in Vietnam. And that's all in the news at 9. Good night.
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। 9:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक फिल्म से। कुछ रिश्ते आवाज नहीं देते, बस खामोशियों में साथ चलते हैं, और जब बिछड़ते हैं तो दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। ये शायरी है मशहूर गीतकार गुलजार साहब की, और आज उन्हीं के द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म आपके लिए लेकर आए हैं 1977 की किनारा। ये एक प्रसिद्ध रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म अपनी भावुक कहानी, बेहतरीन निर्देशन और आदि बर्मन के सदाबहार संगीत के लिए जानी जाती है। फिल्म के मुख्य कलाकार हेमा मालिनी, जितेंद्र, धर्मेंद्र, श्रीराम लागू, दीना पाठक और ओम शिवपुरी थे। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो फिल्म की मुख्य पात्र आरती एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जो अपने प्रेमी चंदन की अचानक हुई मृत्यु के सदमे से बाहर नहीं आ पाती है। चंदन एक दुर्घटना का शिकार होता है और बच नहीं पाता। आरती की मुलाकात इंदर से होती है, जो उसे इस दुख से बाहर निकालने और उसके जीवन में खुशियां वापस लाने की कोशिश करता है। इंदर आरती से प्यार करने लगता है, लेकिन आरती अभी भी चंदन की यादों में उलझी हुई है।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

किनारा फिल्म की कहानी आज आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। मैं कहानी में इंदर एक संवेदनशील और समझदार इंसान है, लेकिन उसके दिल में एक राज छुपा है। वही सड़क दुर्घटना जिसमें चंदन की जान गई थी, अनजाने में इंदर की वजह से हुई थी। और अब इंदर प्रेम और अपराध बोध के बीच फंस जाता है, क्योंकि इंदर से हुए उस हादसे की वजह से आरती भी अपनी आंखों की रोशनी खो देती है। इसीलिए इंदर हर वो कोशिश करता है जिससे आरती की ज़िंदगी बेहतर बन सके। फिल्म के अंत में आरती इंदर को माफ़ कर देती है और कहानी अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचती है। इस फिल्म का संगीत दिया था महान संगीतकार आदि बर्मन ने और गीत लिखे थे गुलजार ने। फिल्म के गीत बेहद लोकप्रिय हुए थे, जिसकी मिठास आज भी कायम है। किनारा एक ऐसी फिल्म है जो रिश्तों की खामोशी और दिल की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से पेश करती है। गुलजार की शायरी में कहें तो नाम खो जाए तो क्या, यादों की खुशबू तो रहती है। वक्त के इस लंबे सफ़र में कुछ लोग किनारा बन जाते हैं, उनकी आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहती है।

FM शिमला 103.7 MHz के साथ हैं आप। 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन। कि परवाने को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा, परवाने को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा, यूं ही मरने के लिए तो कोई मोहब्बत नहीं करता। दामिनी फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। नदीम श्रवण की संगीत रचना और बोल लिखे हैं समीर ने।

किसी ने बहुत खूब कहा है कि तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो। प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो।

कि हसरतें कुछ और हैं और वक्त का इंतज़ार कुछ और है। कौन जी सका है ज़िंदगी अपने मुताबिक, दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है।

दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं FM शिमला के साथ। ख्वाहिशें कुछ यूं भी अधूरी रही हमारी, ख्वाहिशें कुछ यूं भी अधूरी रही हमारी, पहले उम्र नहीं थी और अब उम्र नहीं रही।

कहते हैं कि रिश्ते में विश्वास मौजूद है तो मौन भी समझ आ जाएगा। रिश्ते में अगर विश्वास मौजूद है तो मौन भी समझ आ जाएगा, और विश्वास नहीं है तो शब्दों में भी गलत फहमी हो जाएगी।

10 बज चुके हैं और एफएम शिमला पर ये वक्त रहता है गजलों का। कहते हैं कि मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह को।

गज़ल यानी जज्बातों की वो नर्म बारिश जिसमें इश्क भी है, तन्हाई भी, यादें भी है और ज़िंदगी की सच्चाई भी। आइए सुनते हैं गुलाम अली को।

कि बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे हम, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। गज़लों में आइए सुनते हैं हरिहरन को।

वो मिले भी तो बस इतना सा असर छोड़ गए, जैसे खुशबू कोई हवाओं में बिखर जाती है। हमने खामोशियों में भी मोहब्बत की है, लोग कहते हैं कि गज़ल सिर्फ कही जाती है।

गजलें आप सुन रहे हैं एफएम शिमला के साथ। कुछ चाहतें बारिश की उन बूंदों की तरह होती हैं जिनको पानी की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं लेकिन हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह को।

गजलें अभी आप सुन रहे थे एफएम शिमला के साथ। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लेंगे, अपने हर ख्वाब को हम हकीकत कर लेंगे, देकर साथ एक दूसरे का इस सफ़र में हर मंजिल हर मुकाम को हम हासिल कर लेंगे। अमित कुमार की आवाज़ में आपको सुना रहे हैं बालिका वधू फिल्म का ये गीत, आर डी बर्मन की संगीत रचना और आनंद बख्शी की बोल।

कि चुरा लेना खूबसूरत लम्हे ज़िंदगी से, चुरा लेना खूबसूरत लम्हे ज़िंदगी से, वरना जिम्मेदारी फुर्सत नहीं देती। पड़ोसन फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, आर डी बर्मन की संगीत रचना और राजेंद्र कृष्ण की बोल।

मेरे सनम फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में, ओपी नैयर की संगीत रचना और मजरू सुल्तानपुरी की बोल।

जब जब फूल खिले, इस फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना के साथ शागिर्द फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं फर्स्ट फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं गीत फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

0: इसी के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी और अंग्रेजी समाचार के लिए। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी

0: डिग्री तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional